श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये विविध भारती है। हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनी हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 323। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की, और इसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक, और 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार देवानंद पर। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा में गीतों भरी कहानी दो दीवाने शहर में, लेखिका नासिरा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे मैटिनी शो, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अभिनेता स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दाहिया से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भद्रगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 12:05 पर यादों की महफिल, ये कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1 बजे। दो बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे आप सुनेंगे। 3 बजे कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक बांदी, लेखक इस्मत चुगताई।

विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा, 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का दूसरा भाग। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत कुमार पर। 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

शक्तिवान लगने से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान लंका के वैद्य सुषेण को उनके घर समेत उठा लाए हैं। औषधि है संजीवनी बूटी। पर्वत का जहां वो मिलेगी नाम सुनकर पवन पुत्र हनुमान श्री राम का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। गुप्तचरों से ये संवाद सुनकर रावण चिंतित हो जाता है और कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजना चाहता है। कालनेमी पहले तो रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास करता है, मदांधता त्याग कर महामोह की निद्रा त्यागने की बात कहता है, किंतु फिर रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत द्वारा मरना श्रेयस्कर जान मुनि रूप धारण करके पवन पुत्र के मार्ग में माया रचना करता है। प्यास बुझाने के लिए हनुमान मुनि के संकेत पर सरोवर पहुंचते हैं, जहां मगरी के रूप में उपस्थित अप्सरा उनके पैर पकड़ लेती है। हनुमान उसका वध कर देते हैं। स्वर्गारोहण से पूर्व वो मुनि रूपी कालनेमी की वास्तविकता उन्हें बता देती है। कालनेमी का वध करके हनुमान पर्वत पर जड़ी न पहचान सकने की स्थिति में पूरा पर्वत ही उठाकर लंका जाते हुए अयोध्या के आकाश में पहुंचते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है उसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा दी गई जानकारी और उन्हीं के गायन के उदाहरणों पर यह श्रृंखला तैयार की गई है, लीजिए सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। अब मैं आपको उस्ताद आमिर खान साहब के द्वारा रचित राग दरबारी में तराना सुना रहा हूं, जिसमें हजरत अमीर खुसरो की रुबाई है। हजरत अमीर खुसरो की जो रुबाई है वह खास रुबाई इसमें प्रयुक्त की हुई है। उसकी मानी है, बलबम रसीद जानम तो बिया के जिंदा मानम पसजा के मन न मानम बचकार खाही आमद। उसका मतलब है कि मेरे लबों तक जान पहुंच चुकी है, तू जल्दी आ ताकि मैं जिंदा रह जाऊं, और मेरे मर जाने के बाद आया उससे क्या फायदा है, इसलिए यार मन बिया बिया। तो मैं आपको गाकर सुनाऊं।

अब राग मधुवंती में मैं तराने का अपना कंपोजिशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें रुबाई है, उसका मतलब है कि अपने दिल की बात किसी को मत कहो, अपने जिगरी दोस्त को भी मत कहो, क्योंकि उसका भी कोई दोस्त होगा, इसलिए वो कह देगा। इसलिए अपने दिल की बात को राज रखो। राज दिल बा यार जानी, ता तवानी हम मगो, यार ना यारी बुवत, अज यार यार अंदेशकुन। लीजिए, सुनिए।

0: राग मधुवंती में तराना अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगत की और तबले पर इनका साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने। ख्याल और तराने की विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर आधारित कल की 12वीं और अंतिम कड़ी में आप सुनेंगे ख्याल नुमा ठुमरी की कुछ रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव।

0: और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, भूली बिस्तरी गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

मैं यहाँ, दिल है कहाँ, खो चले सारे निशान। मैं यहाँ, दिल है कहाँ, सोए हैं के जागे चकरा गए हम, सोए हैं के जागे चकरा गए हम। किसी की निगाहों से, किसी की निगाहों से टकरा गए हम।

मस्ती भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

हुआ सच मेरा सपना हुआ अजनबी अपना हुआ सच मेरा सपना हुआ सारे जहां पे लोचा गए हम सारे जहां पे लोचा गए हम किसी की निगाहों से

फिल्म छाया का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत था, संगीत सलील चौधरी का था।

0: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपा के,
1: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से।
0: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपा के,
1: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।

0: जादूगर मालमा।
1: फिल्म चंपा कली के इस गीत की तर्ज बनाई हेमंत कुमार ने। राजेंद्र कृष्ण की रचना आपने सुनी, आवाजें थी लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद। थोड़ा सा इंतजार।

हेमंत कुमार की तर्ज, एस एच बिहारी के बोल, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म थी हिल स्टेशन। राजेंद्र कृष्ण की रचना, हेमंत कुमार की तर्ज और आवाज, फिल्म अनजान।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

पतिता, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल स्वरों में। हसन जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

हाउस नंबर 44 फिल्म में आपने सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। साहिल धनवी के बोलों को सुरों में ढाला सचिन देव बर्मन ने। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में इसे गाया गीता दत्त और हेमंत कुमार ने। शैलेंद्र की रचना आपने सुनी फिल्म डिटेक्टिव से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: राजेंद्र कृष्ण की रचना, संगीत था श्री रामचंद्र का। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का गाया फिल्म अनारकली का नगमा आपने सुना।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

फिल्म प्रेम पुजारी का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। नीरज की रचना सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। हम है राही प्यार की। ये कार्यक्रम आज बस यहीं तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
7: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत,

0: इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा एआई कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है। उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, विविध भारती है हमेशा आपके साथ। भोर की सुहानी किरणों ने पलकें खोली हैं, एक नई चमक, एक नई आभा के साथ विविध भारती भी संगीत की सुरलहरियों के रुनझुन तान को बिखेरती आ चुकी है आपके रेडियो सेट पर, लेकर आपका कार्यक्रम चित्रलोक। तो चलिए जिंदगी के इन्हीं पलों से थोड़ी सी खुशियां चुरा लें, थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुरा लें, इन गीतों के संग क्यों ना हम भी गा लें। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का।

अशोक पंजाबी और चंदन बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना। अशोक पंजाबी की तर्ज थी, सलोनी ठक्कर और नवराज हंस की आवाजों में ये गीत था वीरे दी वेडिंग फिल्म से।

मनोज मुंतशिर के बोलते दानिश बागची की तर्ज थी। श्रोताओ, आज परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करता ये दिवस आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने के मकसद को बढ़ावा देता है। 2014 को पहली बार ये दिवस मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि परमाणु हथियार मानवता यानी पूरी धरती के लिए एक तरह से अत्यधिक विनाशकारी हैं और इससे उत्पन्न खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है, जिससे जन जन में परमाणु हथियारों से होने वाले विनाश के विषय में जन जागरण को बढ़ाया जा सके। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

रेखा भारद्वाज की आवाज में आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे की रचना शांतनु मोइत्रा की तर्ज थी। फिल्म थी लागा चुनरी में दाग। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आज पुण्यतिथि है। 16 जून 1920 में हेमंत कुमार का जन्म बनारस में हुआ। हेमंत कुमार का मूल नाम हेमंत मुखोपाध्याय था, जो पेशेवर तौर पर हेमंत मुखर्जी और हेमंत कुमार के नाम से जाने गए। मुख्य रूप से बांग्ला और हिंदी भाषाओं में उन्होंने चर्चित गीतों को गाया और अनगिनत गीतों को संगीतबद्ध भी किया। वैसे अन्य भाषाओं में भी उनके गीत हैं। 1940 में प्लेबैक सिंगर के तौर पर बांग्ला फिल्म राजकुमार निर्वासन से डेब्यू किया उन्होंने। इस फिल्म में उन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीतों को गाया। इसके बाद 1941 में निमाई संन्यास और फिर गायन के क्षेत्र में लगातार अपने सफर को जारी रखा। हिंदी सिनेमा में उनका पदार्पण 1942 में आई फिल्म मीनाक्षी से हुआ। 1944 में फिल्म इरादा और फिर सिलसिला आगे बढ़ता ही रहा। 1952 में आई फिल्म आनंद मठ, इसके बाद जाल, हाउस नंबर 44, 16वां साल, पोस्ट बॉक्स नंबर 999, एक ही रास्ता, 20 साल बाद, बिन बादल, बरसात। प्रदीप कुमार की फिल्मों की अगर बात करें तो नागिन और जासूस, इसके बाद कोहरा और अनुपमा जैसी सफल फिल्मों में गायन और संगीत निर्देशन भी हेमंत कुमार ने किया। एसडी बर्मन सलील चौधरी के साथ उनकी अच्छी कोलैबोरेशन थी। बांग्ला संगीतकारों की अगर बात करें, निचिकेता घोष, रॉबिन चैटर्जी उनके साथ रहे। 1950 में हेमंत कुमार ने अपने स्वयं के बैनर हेमंत बेला प्रोडक्शंस के तहत फिल्म निर्माण में कदम रखा। इसकी पहली फिल्म मृणाल सेन द्वारा निर्देशित नील आकाशेर नीचे थी। बाद में इसका नाम बदलकर गीतांजलि प्रोडक्शंस कर दिया गया और 20 साल बाद कोहरा और खामोशी जैसी हिंदी फिल्में बनी। हेमंत कुमार रविंद्र संगीत के भी प्रमुख गायक और संगीत नाटकों की प्रमुख आवाज भी थे। हेमंत कुमार बेला मुखर्जी के साथ परिणय सूत्र में बंधे। उन्हें दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1947 की रिकॉर्डिंग गुएर बोधू ने उन्हें शोहरत दिलाई, जो उस समय आए अकाल और गांव की बदलती तस्वीर को बयां करती थी। हेमंत कुमार संगीत जगत की इस अमूल्य विरासत को छोड़कर 26 सितंबर 1989 को पंचतत्व में लीन हो गए। महान गायक और संगीतकार हेमंत कुमार को हम नमन करते हैं।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
5: पैदा हुआ हूँ।
4: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

ज्योति नूरा को आप सुन रहे थे। राजशेखर का लिखा ये गीता कृष्णा सोलो की तर्ज थी। फिल्म थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। श्रोताओ, जानी मानी अभिनेता लेखक निर्माता और निर्देशक देवानंद की आज जन्म जयंती है। भारतीय सिनेमा की परिकल्पना शायद देवानंद के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने फिल्म दुनिया के शुरुआती दौर को एक नई पहचान दी और लगभग 6 दशकों से भी ज्यादा फिल्मों में सक्रिय रहे। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस की बात करें, उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें, स्टाइल की बात करें या फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी, आज भी

सभी के जहन में ये सब बातें ताजा हैं। 6 दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने बेशुमार फिल्में की। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 1946 में देवानंद ने प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में मुख्य भूमिका से फिल्मों में शुरुआत की। 1948 की फिल्म जिद्दी बेहद सफल हुई। फिल्म बाजी 1951 में आई और इसी फिल्म ने उन्हें एक व्यापक पहचान भी दिलाई। फिल्म जाल, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, हम दोनों, सीआईडी, जब प्यार किसी से होता है, प्रेम पुजारी, हीरा पन्ना, गाइड और तमाम फिल्में जिनमें वैजयंतीमाला, साधना, नूतन, नलिनी जयवंत, वहीदा रहमान और कभी मुमताज भी साथ साथ नजर आईं। फिल्म विद्या, जीत, शायर, अफसर, ये फिल्में अभिनेत्री सुरैया के साथ यादगार रहीं। अभिनेत्री कल्पना कार्तिक उनकी शरीके हयात बनी। दिसंबर 2011 को दिग्गज अभिनेता देवानंद ने इस असार संसार को अलविदा कहा।

0: आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, इस फिल्म का गीत आपने सुना देखा भारद्वाज की आवाज में, संजीव आनंद झा का लिखा और स्वरबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: प्रिय

संजू फिल्म का ये गीत आपने सुना, सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाजें थी। पुनीत शर्मा का लिखा ये गीत था, रोहन की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक ऐसे अभिनेता को नमन जिसने पश्चिम के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पैक की शैली को अपनाया, उसमें अपनी थोड़ी सी अदा मिलाई और बनाई अपनी एक सदाबहार अदा।
1: बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है।
0: एक ऐसा हीरो जिसने तकरीबन 4-5 दशक तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। हाँ।

धर्मदेव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता पिशोरीलाल आनंद एक जाने माने वकील हुआ करते थे। तीन भाई थे, चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद। चेतन आनंद अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई आ गए थे और फिल्मों और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए थे। देव आनंद ने अपनी स्कूली पढ़ाई की डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो धर्मशाला गए और वहां से चले गए लाहौर, जहां उन्होंने इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया। 40 के दशक में देव आनंद मुंबई

0: गए। एक दूसरे से वादा किया जब वो कामयाब बन जाएंगे तो एक दूसरे के लिए फिल्में बनाएंगे। आगे चलकर दोनों ने ये वादा पूरा किया। देव आनंद ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सुरैया के साथ कई नायिका केंद्रित फिल्में की। देव आनंद और सुरैया 7 फिल्मों में एक साथ नजर आए। सन 1948 विद्या, सन 1949 जीत, सन 1949 में ही आई शायर, 1950 में ही आई नीली और अफसर नाम की फिल्में।
1: मन मोर हुआ मतवाला, इसने जादू डाला रे।
0: सन 1951 में आई सनम और फिर दो सितारे। दो सितारे सुरैया और देवानंद की एक साथ की गई आखिरी फिल्म थी। सन 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स नामक फिल्म कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की पहली फिल्म थी अफसर। इसके बाद फिल्म बाजी बनाकर उन्होंने गुरुदत्त से किया वादा निभाया। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे।
2: सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन मल होर भूल भल सोना ना।
0: कलाकार थे देवानंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक के साथ देवानंद की बेहतरीन जोड़ी जमी। सन 1952 में आई आंधियां, फिर टैक्सी ड्राइवर।

0: और 9211।
1: आँखों में क्या थी
2: पहला बादल,
1: बादल में क्या थी
2: किसी का आंचल।
0: जब टैक्सी ड्राइवर हिट हो गई तो देवानंद और कल

खास अदा के लिए देवानंद जाने जाते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से देवानंद गुजर जाया करते थे, खास तौर पर अपनी ट्रेडमार्क काली पोशाक में, तो लड़कियां उफ उफ कर

दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद की फिल्मोग्राफी बेहतरीन गानों और शानदार संगीत की एक सुरीली यात्रा भी है। आइए फिल्म दर फिल्म देव आनंद की फिल्मों के गाने सुने और कुछ संवाद भी। सन 1955, मुनीम जी, निर्देशक सुबोध मुखर्जी।

0: तड़पाने को।
1: सन 1956, चेतन आनंद के निर्देशन वाली फिल्म फंटूश, हीरोइन शीला रमानी।

0: जा न जा।
1: सन 1956 में राज खोसला के निर्देशन वाली फिल्म आई सीआईडी। हीरोइन थी शकीला।
2: आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का।

आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने सन 1957 में बनाई 9-2-11 और इस तरह से उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म की हीरोइन थी कल्पना कार्तिक।

0: रूप में चली।
1: इसके बाद विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने कई फिल्मों में काम किया। सन 1960 काला बाजार, खोया।

0: सन 1963, विजय आनंद का निर्देशन तेरे घर के सामने।
1: बड़ा नटखट है समां, हर नजारा है जवां।

0: सन 1965 देव आनंद और विजय आनंद की कल्ट फिल्म गाइड।
1: आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूँ, जिस जैसे मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया, जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे खेल है। अभी बेजान होकर गिर पड़ूंगा तब देखोगे, लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही, कम से कम जीने की इच्छा तो ना जाने दो। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है, तन रहे न रहे मैं रहूंगा।

बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ, कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाए करूँ तो बुरा मतलब। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है

0: देव आनंद और विजय आनंद की जोड़ी की बेमिसाल फिल्म साल 1967 ज्वेल थीफ।
1: क्या हुआ तुम्हें, सारी रात तुम मेरे साथ रहे हो? मैं कहीं पी तो नहीं ली तुमने? रात को 9:30 बजे का शो हम दोनों ने साथ देखा, उसके बाद होटल में जाकर सो गए।
2: की बात कर रहे हैं आप? पूना की गाड़ी के बाद आज पहली बार तो आपसे मिल रहा हूँ।
1: पीना है तुम्हें, हुआ क्या है? पूना से कलकत्ता हम लोग साथ आए हैं, होटल में डबल रूम बुक किया, पल भर के लिए भी तो साथ नहीं जुड़ा हम दोनों।
2: कितने बजे तक मैं आपके साथ?
1: तुम सो रहे थे बस मैं निकला है।
2: क्यों? जिसके साथ आपने 2 दिन बिताए वो अमर है।
1: अमर
2: अमर
1: उसने फिर धोखा
2: ड्राइवर। ओके बात

0: अच्छे मालूम हो जी। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है।
1: अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने बेवकूफ अमर।
2: रात अकेली है बुझ गई दिल।
3: 1970 में आई जॉनी मेरा नाम, निर्देशक थे विजय आनंद।
4: तुम्हारा क्या नाम?
5: जॉनी।
4: अरे तू इंसान है या हैवान?
5: तो क्या नाम है तुम्हारा?
4: पहले जरा कानों की महल ने खिलवाई है। एक ही बात को बार बार दोहराने का आदि नहीं हूँ मैं। एक बार और बता, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे।
5: जॉनी।
4: मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से बात कर पड़ेगा तो आप कभी झूठ से सिलहान करके रफू चक्कर हो जाते।
5: हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिए जाए।
3: इसके बाद 1971 में तेरे मेरे सपने।
6: डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं? MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन, मेडिकल रूज हूँ। इसके साथ तुम क्या करो?
7: इनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ।
6: उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को।
7: मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठर्रे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता।
6: आनंद, मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में आए। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे।
3: और सन 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम।

0: कमल।
1: बात चल रही है देव आनंद की कुछ बेमिसाल फिल्मों की। सन 1958 में आई राज खोसला के निर्देशन वाली 16वां साल। हीरोइन थी वहीदा रहमान।

0: प्यारे धीरे धीरे चले।
1: सन 1960 में राजकोसला लेकर आए देव आनंद और सुचित्रा सेन की अलबेली जोड़ी वाली फिल्म बम्बई का बाबू।

0: नासिर हुसैन के निर्देशन वाली सन 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है, हीरोइन आशा पारेख।
1: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है।
0: युग बदलते चले गए, हीरोइनें बदलती चली गईं, लेकिन देव आनंद की शोखी, उनकी चंचलता और बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू कायम रहा। सन 1961 में आई वॉर फिल्म हम दोनों, निर्देशक अमरजीत, हीरोइनें नंदा और साधना।

0: अमरजीत ने सन 1965 में देवानंद और तीन हीरोइनों के साथ एक नायाब फिल्म बनाई तीन देवियां। ये हीरोइनें थीं सिमी गरेवाल, नंदा और कल्पना मोहन।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

0: ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन निर्देशन का देव आनंद का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई साल 1971 में।
1: दे!

0: हिराई हीरा पन्ना
1: की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
0: सन 1978 में आई देश परदेश।
2: अरे जैसा देश वैसा भेस फिर क्या डरना, अरे छोड़ो रानी छोड़ो यूं ही आहे भरना, अरे काहे की शर्म है कुड़िये जल्दी करना।
0: आनंद आखिरी दम तक अपनी फिल्मों का निर्देशन करते रहे। साल 2002 में देव आनंद को फिल्म संसार में अपने अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ऊर्जा और जिंदगी के लिए उनका फलसफा नायाब था।
3: दर्द भी हमें कुछ

0: रंग उसी के होली।
1: 3 दिसंबर 2011 लंदन की एक होटल में देव आनंद का निधन हो गया। सारी दुनिया सन्न रह

आनंद, अपनी असीमित ऊर्जा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने सदाबहार फिल्मी जीवन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था देव आनंद पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।

नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन। श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी उसके दिल पर छाई घटा बन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा, मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा। उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है, मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यह नहीं चलेगा, ठीक है ना? शुभम ने फौरन कहा था, जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं, मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए। दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है। इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहाँ आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे। उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था, जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी वेस्टमेट में था, जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा न हो, इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। और श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ, और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं, पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, यूँ दिल छोटा नहीं करते, है ना?

फोन रखने के बाद उसे याद आया कि 7 फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा। इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति? हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या? श्रुति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति। ठीक है, श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी, माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो? कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी। उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयाँ हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं। जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा, तो एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो, अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जीजी विशा। वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों, रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ, और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

0: शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूँ, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे बिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा, हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूँ, यहाँ 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
2: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भर कर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक।

0: भारती पर।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।

0: मैटिनी शो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय हमारे स्टूडियो में हैं उदय दहिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जाने माने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत धन्यवाद यूनुस जी और विविध भारती, जो कि हमारे बचपन से हमने इसको सुना।
1: बिल्कुल,
2: और जब सुनते थे तो कभी सपने में सोचते थे कि क्या हमारी आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगी,
1: और आज आ रही है।
2: और आज आ रही है तो एक सपना साकार हो रहा है।
1: जब आपने बचपन का जिक्र किया तो चलिए फिर बचपन में चलते हैं
2: जी।
1: तो कहाँ आपका बचपन बीता था और कैसा था आपका बचपन?
2: बचपन बड़ा मजेदार था। कारण ये है कि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
1: हाँ।
2: तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते थे,
1: हाँ।
2: तो एक ही शहर नहीं, बहुत सारे शहर,
1: बहुत सारे शहरों वाला बचपन है
2: जी जी।
1: जैसे
2: जैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में,
1: बताओ।
2: फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया भोपाल,
1: तो भोपाल आ गए।
2: फिर भोपाल से ट्रांसफर हो गया रायसेन,
1: लो।
2: तो ऐसे शहर बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया, पहले नाम होता था होशंगाबाद
1: जी।
2: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है पिपरिया,
1: हाँ।
2: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
1: अच्छा, पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
2: जी? बिल्कुल, पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
1: क्या बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है आपका।
2: हाँ जी बिल्कुल है। क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: कहाँ पर?
2: ये है सतना पन्ना।
1: हाँ, पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए
2: टाइगर रिजर्व है, जहां पर हीरे और पन्ने निकलते हैं।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहां से शुरू होती है?
2: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी, एक्टर भी, कॉमेडियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर है,
1: किशोर कुमार जी।
2: जी जी। तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी। और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था
1: जी।
2: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते
1: पता
2: नहीं थे।
1: नहीं होता,
2: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भांग ऊपर जा रही है। मैं सोचता था ये क्या कर रहे, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
1: वाह वाह वाह।
2: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं।
1: अच्छा।
2: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
1: बिल्कुल,
2: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता।
1: सही है।
2: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
1: यस,
2: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव की तरह सीखी जाती है।
1: बिल्कुल।
2: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने

0: का ढंग सीखते हैं, हम किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
1: क्या बात है।
0: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
1: और जिन दिनों की आप बात करें उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
0: नहीं था, बिल्कुल
1: नहीं
0: था।
1: मिमिक्री बहुत होती थी। और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे?
0: अरे नायकर साहब
1: जबलपुर के नायकर साहब।
0: जी जी जी। तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पर सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है। और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन पर महाभारत सीरियल आता था, तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
1: यहाँ से शुरुआत हुई। जैसे भीष्म पितामह,
0: भीष्म पितामह करता था मैं, दुर्योधन करता था मैं।
1: अच्छा, कड़क आवाज वाला जो।
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो। लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
1: कुछ करके बताएं।
0: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूँ, जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर मुकेश खन्ना भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
1: जी जी जी।
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे?
1: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत इसर वाली आवाज है।
0: आप भीष्म पितामह समझा रहे,
1: वो कड़क आवाज,
0: वो समझा रहे हैं। कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र, समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को। अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स, तो बताओ क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स?
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से
1: वो जमाना याद आ गया जब
0: बचपना
1: कर्फ्यू लग जाता था।
0: जी जी।
1: तो रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
0: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
1: फिर आगे
0: मैं धीरे से बढ़ा, तो अपने शहर से दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
1: लोग बुलाने लगे
0: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं, जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं, उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए?
0: जी बिल्कुल। मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी?
0: हाँ, घर से डांट पड़ती थी।
1: पढ़ लिख लो।
0: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
0: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे,
0: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
0: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
0: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में। तो प्रसन्न होते थे बहुत लोग।
1: वाह।
0: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं।
1: हाँ, बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
0: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
1: बिल्कुल,
0: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते थे
1: राज्य स्तरीय,
0: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोचा था आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
1: अच्छा।
0: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
1: अरे बाप,
0: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
1: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
0: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
1: वो अच्छा करते
0: हैं, वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था।

0: मेरी माँ ने अम्मा जिनको बोलते हैं उनने फोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं है। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपये बोलता हूँ, मुझे 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो मेरा
1: इतने
0: तो
1: ऑनेस्टली बता दिया।
0: हाँ। तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था
1: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी कि
0: जी।
1: उसमें जितने लोग शामिल हुए
0: जी
1: सब जो हैं वो अलग-अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
0: जी बिल्कुल
1: और
0: है,
1: बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
0: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे।
1: बिल्कुल। तो
0: हाँ
1: जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
0: जी
1: उसमें आप शामिल थे।
0: साहब, ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय,
1: जी,
0: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
1: और आरंभ से आप थे,
0: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था,
1: मतलब आप ही से शुरू हो रहा है।
0: मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
1: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस सीजन
0: उसमें
1: में? एहसान थे। हाँ
0: राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरैशी थे, और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
1: गजब गजब
0: तो
1: गजब,
0: ये सारी
1: मजेदार कॉमेडी करते थे वो।
0: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी
1: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते
0: जी
1: थे और
0: बिल्कुल,
1: लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
0: सच्ची बात।
1: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़ के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
0: हाँ जी
1: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
0: जी,
1: है ना, जो वो कहां के एहसान भाई,
0: वो
1: सतना के,
0: मध्य प्रदेश के हैं,
1: सिवनी के। हाँ,
0: सिवनी के हैं वो जी।
1: तो वो अपनी शैली लेके आए,
0: जी हाँ
1: आपकी अपनी शैली।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था।
0: नहीं हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे, और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे,
1: जी
0: क्योंकि था ही उतना,
1: बिल्कुल।
0: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
1: क्या बात है।
0: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
1: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन वन एपिसोड वन आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने
0: वहां पर? ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं, उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए। तो हमने अपना सुनाया, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा। तो
1: अच्छा,
0: उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप,
1: वाह,
0: और ये आपको एक एपिसोड में चार अलग अलग दौर होंगे, पहला
1: हाँ
0: दूसरा तीसरा, तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, और फाइनल में ये सुनाइए।
1: करेक्ट है।
0: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस
1: बिल्कुल
0: उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए, और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
1: क्या था वो?
0: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था, वो कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया, और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, और उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको, तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंसा गया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
1: हाँ।
0: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के 4 स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है, तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं तो लोग समझते मैं चढ़ रही हूं, धक्का देके ऊपर कर देते हैं। मैं 4 स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
1: कहां से सोचते हैं आप?
0: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
1: अच्छा, लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ और जो अपने कमान के तीर है वो तो खर्च होते जा रहे थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
0: देखिए, एक फसल कटती है तो दूसरी
1: तो आ जाती है।
0: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
1: हाँ।
0: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
1: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
0: 20 वर्ष हो गए।
1: 20 वर्ष में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी?
0: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूँ 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते हैं, कुछ और चलते रहते,
1: क्योंकि सब बदल गया है,
0: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
1: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
0: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
1: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
0: बहुत मजे करते थे। मतलब जो वहां नहीं होता था,
1: हाँ,
0: उसकी बातें चलती थी।
1: अच्छा।
0: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की, कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
1: हाँ।
0: तो बहुत मजेदार होता था।
1: एक दूसरे की भी करते थे?
0: एक दूसरे की जैसे? भी करते थे। तो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे
1: मानेंगे।
0: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
1: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
0: तो वो जब बात करते थे बोलते थे, अरे दहिया ये देखो भैया, हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं है, हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर, ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
1: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव।
0: जी जी। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है। को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
0: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है।
1: हाँ।
0: मैं स्कूल में जो बच्चे हैं,
1: हाँ,
0: और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाए, बहुत दबाव होता है बच्चों
1: बहुत
0: के
1: ज्यादा,
0: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं, और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए, हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूँ।
1: अरे गजब।
0: और उनको ये समझाता हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
1: वाह वाह वाह।
0: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
1: कितनी प्यारी बात है।
0: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूँ, और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूँ, उनके स्कूल की बातें करता हूँ, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूँ, तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया।
0: जी,
1: है ना, और आप मुंबई के हो गए।
0: जी,
1: जिंदगी कितनी बदल गई?
0: जिंदगी बदली तो है, लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता है, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
0: देखिए, काम तो बहुत सारा किया, लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है, वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोगों ने, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा, लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।

0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके, और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
1: जी
0: होगी।
1: पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है। हमारे
0: यस,
1: पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं था,
0: परफॉर्मर नहीं था।
1: और अगर वहाँ छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे, तो उनको लगा कि कुछ तो अच्छा कर रहा है।
0: हाँ, जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने,
1: जी
0: तो वो कैसा मोमेंट था?
1: वो तो अद्भुत था, वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे
0: जी,
1: पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो, तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब बड़े बड़े,
0: बिल्कुल।
1: और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ आओ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में एक आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? तो बोले, जी सर, दाहिया साहब ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले, साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले, हाँ आते हैं। बोले, आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
0: अरे गजब गजब।
1: तो वो मोमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब
0: कितनी प्यारी बात है, मतलब
1: कहा।
0: उन्हें कितना अच्छा लगा
1: बहुत
0: होगा
1: अच्छा लगा उनको।
0: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
1: जी।
0: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है, लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं, और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं
0: हाँ,
1: तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ। मैंने
0: अरे
1: परसाई जी
0: वाह
1: को खूब पढ़ा हुआ है,
0: क्या बात है।
1: उनका पूरा जितना भी साहित्य है 6 खंड में वो मेरे पास है।
0: हाँ,
1: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज़ ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूँ या जो देखता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
0: वाह वाह वाह,
1: तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रहता है, और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूँ
0: बहुत
1: जैसा
0: बढ़िया,
1: मौका आ जाए।
0: क्या बात है।
1: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूँ उनका कि इनकी रचना है ये,
0: हाँ,
1: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ, ये
0: जरूर जरूर।
1: परसाई जी की, मैं उनकी रचनाएं घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
0: वाह वाह,
1: लेकिन एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
0: जरूर।
1: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं, और आजकल
0: हाँ,
1: बड़ा मीडिया में छाया भी है, हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला, ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
0: याद आ गई मुझे ये
1: तो
0: रचना।
1: वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है, मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला? हाँ, मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है, और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप, हमारा नस्ली कुत्ता। बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है, अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ, तो बोले आपको भी मैं जानता हूं, उसके 1 साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही
0: क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो
1: जी
0: बहुत तेज होती है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: तीखी होती है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
1: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ
0: जी
1: जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
0: अच्छा,
1: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
0: ओके।
1: तो ये कहानी है कि

0: भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो वो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले कैसे? बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं होशियार आदमी हूं, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया, अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब, और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब, और मैंने मन में सोचा कि ये खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का हूं। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। 5वीं मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
0: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ रहा डॉक्टर साहब। अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसकी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा, तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब, और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए, अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं, कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहां जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहां से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
1: अरे गजब।
0: एक डेढ़ मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया, जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूं। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
1: वाह।
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं यहां से उनके हास्य रस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुना नहीं देना।
1: वाह वाह वाह वाह। मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है, और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
0: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी। सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीजें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती हैं। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
1: बिल्कुल।
0: आज वो 80 प्लस की एज में हैं
1: जी,
0: और अभी भी वो मंचों पर दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूं। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहां बहुत भीड़ हो, वो वहां परफॉर्म नहीं करवाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
0: जी।
1: ये कहां से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
0: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
1: क्या बात है।
0: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है, ज्यादातर लड़कों को यही होता है, वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूं और मैं प्रोग्राम कर रहा हूं।
1: वाह वाह वाह।
0: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था।
1: और वो पूरा हुआ।
0: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में

0: जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके फिर अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है, मेरा अपना पूरा हुआ है।
1: जी जी
0: जी, सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
1: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
0: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापता गंज किया है।
1: लापता गंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
0: जी जी, लापता गंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था, उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
1: वाह वाह वाह।
0: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
1: अच्छा।
0: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी और नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
1: जी जी।
0: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के। तो उसमें हाँ। राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है। कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज, ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
1: जी।
0: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूं।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसे कुछ फिल्में की हैं मैंने।
1: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
0: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
1: बिल्कुल। तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं।
0: जी, जी, जी।
1: इतनी देर से हम बात करें, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
0: जी बिल्कुल। मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूँ तो
1: जी, जी।
0: उसके ऊपर से मैं सुनाता हूँ कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था घर में, कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे, बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने कहा बेटा एक चीज़ बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूट कर पॉपकॉर्न बनता है गर्म तवे पर, तो ये उछलता

0: में वही सुना दिया परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है, तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
1: हर बार कुछ
0: तो
1: नया मिलता
0: हमेशा
1: है,
0: कुछ नया करते रहना
1: पर
0: पड़ता है।
1: पुरानी चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
0: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
1: आपके लिए किस तरह की फरमाइशें आती हैं?
0: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूँ तो वहाँ की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूँ, और अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाएं।
1: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
0: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड,
1: बिल्कुल
0: पूरी दुनिया में
1: बिल्कुल।
0: जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहाँ के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है, और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहाँ के लोग ही समझ पाते हैं, भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मे आई कम इन सर? अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहाँ से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहाँ उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहाँ का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा? अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला मुझे अंदर नहीं आने दिया, बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध मुझे भी नहीं आने दिया, अब बोले देखो मैं जा रहा हूँ। ये गए,
1: हाँ
0: इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए, बोले आ
1: दो ही
0: जाओ तुम।
1: शब्दों में
0: तो
1: निपटा
0: दो शब्दों में निपटा
1: दिया।
0: दिया, तो बोले आ
1: बहुत
0: जाओ,
1: सही,
0: तुम्हारी जरूरत थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: ऐसे
1: बात है।
0: लोकल की भाषा के भी बोला।
1: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना। और कुछ बुंदेली में?
0: अब बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है,
1: जी
0: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो।
1: जरूर।
0: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं, और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्हीं उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है। तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ, और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं, और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव गांव से निकली हैं वो,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने। तो ज़्यादा आवागमन के साधन नहीं है, एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता था जिसमें 15-20 लोगों को वो
1: हाँ
0: बिठा
1: बिल्कुल
0: के, और वो
1: बिल्कुल,
0: ड्राइवर ऐसा लटक के चलाता
1: लंबा
0: था।
1: वाला।
0: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है। अब रात को ही तैयारी शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं,
1: बिल्कुल।
0: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते, काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया। तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया। अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी, और करिया की बाई यानी करिया की
1: अम्मा।
0: माँ। अब दोनों की बात चल रही है, कल नर्मदा जी नहाने जाना है, तैयारी शुरू हुई है। करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया, और करिया की बाई उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लइयो, भुन सारे अपन नर्मदा सपड़ वे चले, और सकारू जल्दी उड़ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
1: हो
0: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई थी।
1: निकल गई।
0: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
1: बस तो गई।
0: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली आ। अब वो आगे कैसे गए, वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
1: ठीक है।
0: बोले कल का भाई जी करिया के दद्दा कहन लगे कि चल तेरे का नर्मदा सपड़ भी धलना हूं, तो भाई भंसार हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी, और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तक चले गए, और वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है, तो भाई जी करिया के दद्दा मुँह आगे ले गए भाई, वे भाई कैसो टीन को डब्बा सो ठाड़ो। वहां को आंग ऐसा सुंगर गया जी।

0: तो मैंने कही का करिए एक दद्दा जो का जल्द है, तो वो कहने लगे जा को नो टेम्पू है,
1: टेम्पू।
0: तो अपन जय से चल हैं आज। तो भाई जी करिए के दद्दा तोमदा ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गए और मेरे का जब पीछे पटिया में बिठार दई।
1: हो
0: अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जा मैं। तो भाई ये के इतो बड़ो करिया से मोड़ा आओ, माने बा को ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको, तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा ये उमीर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जाने का हुई है जा में। तो भाई बाब करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई।
1: हाँ
0: ओबर रस्सी लपेट के जीजवान ने
1: खैची
0: बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो। ओबर ड्राइवर से कहने लगो हूं, तो बस ड्राइवर ने भी कह दई हूं। और
1: हाँ
0: जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीजवान ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू हो। अब वो ऐसो डगमगा रहा हो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जीजी बा ड्राइवर के बगल में एक टीढ़ो सो हैंडल लगो थो, बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गैर है जैसे चला थे जो। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए।
1: पलट तो नहीं
0: तो
1: जाएगा।
0: मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो रोकत नहीं हूं, रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे। और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे
0: फिर काय की नर्मदा जीजी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
1: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई, सच में मजा आ गयो। वो ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास
0: जी
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है।
0: सच्ची बात
1: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो
0: जी
1: कितना काम करती है मंच पर?
0: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूं भाषा कभी विवाद का विषय होती नहीं है, भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं, आप
1: बिल्कुल
0: अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से। वो भाषा है, भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए, तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली लव कर, मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला गया।
1: लो कर बोल रही थी।
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा ना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंड वाला में रहता था, 2005 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। 4 महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे होर्डिंग वहां पर, उस पर लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार 4 महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहां रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की, तो अब वो मराठी है, उनको सारी मराठी
1: क्या
0: आती है।
1: उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी
0: नहीं
1: करती
0: वो
1: है?
0: बिल्कुल नहीं है, और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं और घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है।
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है,
1: हाँ
0: दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें
1: हाँ
0: और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे।

0: बिल्कुल
1: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, तो ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए।
0: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
1: हाँ, ऐसा होता नहीं है।
0: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
1: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूँ
0: और घर में
1: बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
0: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
1: बिल्कुल बनाई है।
0: सुनाइए।
1: देखिए मैं,
0: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको।
1: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली। अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। तो यहां भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
0: लो,
1: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर। उसी को देखते जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा, कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज देख कर कि वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
1: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं मुंबई नहीं आया था।
0: यस।
1: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल।
1: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था और मैं कभी सोचता ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं, मेरे पास आओ, यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो। आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए।
0: हाँ।
1: जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ। तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। वो है फिल्म डॉन का, क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूँ, जिसका मुझे था इंतजार
0: वो घड़ी आ गई।
1: वाह, तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो वाला गाना बजाया जाए।

0: उदय जी बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और समृद्धि नायक। संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन?

0: एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए, एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
4: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
3: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
5: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
6: अब
5: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई

0: दिनों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी के सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

साथियों, लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता देंगे हम आज की इबारत क्या है। साथियों, देखते ही तुझे कह उठा दिल, मिल गई है मुझे मेरी मंजिल। तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाओगे। हसीन झरनों के साई में अकेला छोड़ जाते हो, न जाओ, तुम्हारे बिना बहारों में खुशी क्या है। ठहरो, मैं दिल को संभालू जरा, अभी तो आए हो, अब जाते हो क्यों? क्या मेरी चाहत पे तुमको नहीं भरोसा?

जाके फिर आओगे, आके फिर जाओगे, छोड़ो ये आना जाना कि बीच राह में बिछड़ जाएं कहीं हम अगर, तो आओ पास बैठें के कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं और कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले ये कहानी सारे जहान से।

तो सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं, मतलब हम तक भेज चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम पढ़ देते हैं आपके कुछ संदेश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुकम्मल मोहब्बत में खोए महबूब और महबूबा की दीवानगी, मदहोशी का माकूल चित्रण, मोहब्बत के मारों की रुमानी दास्तां, जहां किसी गैर की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मंजिल है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत प्यार में मिलन की दास्तान और साथ बिताने वाले सुनहरे पल को लेकर आई है, जो मोहब्बत में अपने भरोसे को कायम रखता है। नजरों से नजरों का मिलना कुछ इस तरह हुआ, हर नज़ारा एक हंसी ख्वाब जैसा हुआ, जब हम मिले तो सज गया समा, प्यासे दिल की जमी को मिला आसमां। अगला कमेंट है कि आज की सुंदर इबारत प्रेम की उस कहानी को सुर देती है, जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अगला मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी, तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है, उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते, और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

जगदेव आनंद के भतीजे हैं और विशाल आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों, जो मैसेज मिला है ये है कि इस फिल्म की खास बात यह है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल आनंद, सिमी ग्रेवाल, नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों, बिछड़ के फिर मिलेंगे यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। जिंदगी का सफर मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है, हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़ कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएं जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतजार है। साथियों, जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद, यानी कि टाटा, बाय बाय, सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी जल्दी ना ढले। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो, अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहाँ एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ उसके साथ उसका वो ख़ास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है, सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फॉर्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी। तो ठीक है, कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है, इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है। तुम दूर जाने की बात करते हो, जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़ कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी ख़त्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश।

अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आजारी प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे और

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए,
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और कुमकुम, इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज आपने सुनी मोहम्मद रफी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी

गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखांत तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं, और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं, और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है, उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें, बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक
1: अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
3: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
5: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
6: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
7: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
8: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
2: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहा सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: group.
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसे दे एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन

0: करने के लिए ही पैदा हुआ
1: पैदा हुआ
0: अब जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं

0: नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कहे।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नवसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वत देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। लाहौल वाला
2: नहीं,
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अल्लाह मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार। ए मैं मर गई। अल्लाह
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नया बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से।
2: सरकार
1: अब जाती है कि
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या बक रही है गधी, अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
2: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकरर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
2: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौल वला
2: कुव्वत। हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी, मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने

0: ऐसे जूती उतार कर दी नाक पर?
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
0: नया बुबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
0: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
0: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
2: अरे भाई जहांगीर साहब और छमनिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
3: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अमा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
3: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है, कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अमा अमा ये क्या किस्सा है?
3: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
3: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
3: मैं इसे बदकारी समझता हूँ।
2: ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
3: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
3: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
3: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
2: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
3: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
3: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
3: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलाद नरीना न पैदा हुई।
3: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
3: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
3: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगी।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं समझती हैं।
3: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
3: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
3: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा, अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
2: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
3: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
2: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
3: जब्बार अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है, मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
2: तो एक काम करो साहबजादे।
3: क्या?
2: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
3: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायाब बुबू?
0: मुझे नायाब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
3: हलीमा,
0: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती है।
3: नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
0: मेरे अच्छे नवाब।
3: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा। रहम करो हलीमा।
0: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल ऐसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
3: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
0: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
3: मुझे

0: साफ करेंगे।
1: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
1: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
1: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा तुम्हारे हाथ कितना सर्द हो रहे हैं।
1: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा हलीमा हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो। खुदा और रसूल खुदा की कसम तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई जी का आजार हो गई, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
1: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म।
2: तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
1: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
2: हाँ बेगम, भलाई आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
1: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
2: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी के साहबजादे घिनखाने लगेंगे।
1: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
1: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
1: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
1: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
1: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
1: आहिस्ता बोलो।
0: हम मर जाएंगे।
1: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा बुरी फाल मुझसे ने निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
1: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती। सनोवर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
0: बच्चा?
1: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा।
1: नहीं अल्लाह नहीं।
0: हलीमा तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
1: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
1: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम बाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
1: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
1: सरकार।
0: शट अप।
3: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
4: ये लीजिए।
3: ये शह वो मारा।
0: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
4: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाती जमी है खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाईजान
4: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
3: शह हजमत नवाब शह।
0: प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
4: ओफो कहो क्या कहना चाहते हो।
0: जरा मैं
4: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
0: भाईजान
4: अम्मा कह भी चुको।
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
3: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
3: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा। है, है, क्या उठान है अम्मा, उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
4: अफजल भाई अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
4: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
3: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
4: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
3: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता। प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
3: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
4: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
4: और निकाह? काजी कौन था?

0: वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर झुटिया मारती। बेटी जान, ये गज भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
1: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं। मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
0: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
1: आय हाय बुबू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
0: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
2: ओहो, नायाब आई है। चली कहाँ? क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे है?
0: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बुबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चे वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया। जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
0: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम। नौच, यो कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: दोस्त भाई, आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्लाह क्या पटाखा है।
4: कमीने पादी,
3: छमन, होश में आओ, क्या पागल हो गया?
4: हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा। चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
5: जी सरकार।
4: कौन, सरवरी?
5: जी।
4: तुम यहाँ क्या कर रही है?
5: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दूँ?
4: चल भाग यहाँ से, और हलीमा को भेज।
5: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
5: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हम्माम में लगा दिया है।
4: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
5: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
4: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी। चल भाग।
5: हम नहीं जाते।
4: कहाँ है हलीमा, बता।
5: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
4: बता, नहीं बताएगी?
5: बताती हूँ।
4: बोल।
5: वो उधर शागिर्द पेशे में।
4: क्यों?
5: वो उसका जी अच्छा नहीं है।
4: ओह,
5: ये मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
4: फरखुंदा बाजी।
5: अरे छमन मिया, क्या पैदल भागे चले आप?
4: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी, वो मर रही है।
5: अहे, कौन?
4: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
5: ठहरो,
4: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
5: नहीं मिया, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं। बुबू, नायक बुबू, अस्पताल की लारी आई है।
0: अस्पताल की लारी? दीवानी हुई है ना मुराद?
5: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
6: ये क्या किस्सा है नायक?
5: लारी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
6: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
0: लीजिए, वो आ गई।
5: तस्लीम मानी जान।
6: जियो, ये मैं अस्पताल की लारी क्यों आई है?
5: हलीमा को लेने।
6: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
5: इस वक्त बहस न कीजिए, पहलोठी का बच्चा है, अगर
6: तुम्हारी बला से। तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
5: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
6: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
5: मुझे मजबूर न कीजिए मुमानी जान।
6: क्या मतलब?
5: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
0: पुलिस?
6: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गलत हो मेरे सामने से।
5: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
4: नहीं, मैं उठा लूंगा।

0: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
1: ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
2: चुप रहो बेवकूफ।
0: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो।
2: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
3: ये क्या हो रहा है?
0: आदा मामूजान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
3: हमसे पूछे बगैर?
2: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
3: मर जाने दो।
2: अब्बा हुजूर,
3: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
2: नहीं,
3: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे कुछ ताकत कर रहे हो? बेशर्म।
2: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
3: क्या बकते हो मर्दूत? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
2: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
3: तुम्हारे इतने दिमाग?
0: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
2: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
0: अरे कहाँ जा रहा है छम्मर मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
2: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
0: ना जाओ मेरे लाल।
2: खुदा।
0: ना जाओ मेरे लाल छम्मर।
3: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएगी।
0: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ ना, मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
4: नहीं पप्पू, कैसे हैं चमन मियाँ के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
5: अरे मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
4: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
5: अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
4: घर बार कैसा है?
5: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
4: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
6: नाट्य तरंग में अभी आप इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हिमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
10: तुम्हारी याद सताते हैं
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब?
1: हाँ, हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ, मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
0: जी बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
0: जी
1: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहाँ। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
0: जी,
1: था
0: जी।
1: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
0: बिल्कुल।
1: तो मौसिन को

0: पूछा, सीखती है? उसने कहा, हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। इतना भी काफी था उनके
1: हाँ,
0: लिए, इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी था।
1: बड़ी बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम
1: कम है। जी
0: है ना।
1: जी जी
0: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने, कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
1: सीखा।
0: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याणजी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो दिलीप
1: अच्छा,
0: साहब के साथ खेलते थे टेनिस।
1: हाँ,
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश हो गया है। तो अबू साहब ने, हाँ, खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, प्लीज बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ, प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
1: जी
0: और सुनकर मंदाकिनी जी, तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए,
1: रात की।
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
1: जी
0: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे जी
0: तो अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आईना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में, सुनहरा संसार का उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी,
1: अरे
0: इतना ही था
1: वाह
0: बस।
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट, अरे,
1: जी।
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने,
1: आपकी पसंद का ये गीत
0: गुड।
1: सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब?

0: ने,
1: हाँ
0: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूं।
1: जी जी जी जी
0: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ,
1: बिल्कुल
0: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने
1: चलने लगा।
0: लगा।
1: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
0: आप अगर सुनो, देखो
1: हाँ
0: मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना, बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तुम मेरा तू, उस पे बात पे आ गई। पर वही तो, वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी है,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल।
0: था बस।
1: और
0: तो
1: उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता
0: बिल्कुल
1: था जब अभिनेत्री उसको उसी
0: जी
1: तरीके से अपने होठों को बनाकर
0: जी जी
1: गाती है तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
0: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया,
1: जी
0: प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन,
1: जी
0: मेरे पंचम दा।
1: जी
0: इतनी प्रभावित, इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
1: जी
0: तो
1: होता है जब एक
0: बस
1: कलाकार दूसरे
0: हाँ
1: कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने
0: हाँ
1: प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं
0: बिल्कुल।
1: इस तरह की।
0: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया, इतना, मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
1: बॉन्डिंग जो
0: बहुत
1: थी।
0: बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: अलग।
1: क्यों ना पंचम दा का ये गीत सुन लिया जाए जिसमें
0: बिल्कुल,
1: आपने अपनी आवाज दी
0: तेरा
1: हो।
0: मुझसे है पहले का नाता
1: नाता
0: कोई।
1: कोई, थोड़ा सा गाएंगी तो हमें
0: बिल्कुल
1: भी अच्छा
0: बिल्कुल,
1: लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
0: कोशिश करूंगी, और
1: जी
0: गला बंद है पर कोशिश
1: जी
0: करूंगी।
1: बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई,
1: वाह
0: तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी
0: वो बच्चा अपने पिता
1: वो मुझे
0: शशि कपूर से
1: पंचम ने
0: कहते
1: सिखाया, पता
0: जी
1: है? उन्होंने
0: जी
1: कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो,
0: जी डैडी करके।
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं, मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे। हाँ आगे क्या है डैडी, मैं तो
0: हाँ
1: भूल ही गया, मुझे वो चाहिए।
0: बिल्कुल
1: बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी
1: आज,
0: जी जी
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है, कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं,
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
0: अच्छा
1: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहाँ से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं। तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया कोई भी
0: जी
1: गाना
0: अरे
1: अच्छा, पर तेरा दादा तुझे
0: देगा,
1: तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए है, प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा,
0: बिल्कुल।
1: एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर

0: में किशोर काका आराम कर रहे थे। दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे
1: अच्छा।
0: और फिर ओवर टाइम। तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचम दा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी
0: बहुत ज्यादा,
1: जी
0: गाना सीखा मैंने। फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे, वो
1: कि आप गा
0: गाएगी,
1: लेंगी।
0: हाँ बोले वो गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वो ही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी।
1: जी
0: जब वो आए, उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो, इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
1: सूट
0: सुट होती
1: करती है।
0: है, इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे मिला।
1: बात है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बताइए,
0: प्लीज
1: तेरा
0: प्लीज,
1: मुझसे है पहले का
0: बिल्कुल
1: नाता कोई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी
1: रही
0: जी
1: हूँ।

0: था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान,
1: जी
0: ये
1: जी
0: गाना बन गया,
1: जी बिल्कुल,
0: तेरा मुझसे है पहले का
1: नाता
0: नाता
1: कोई।
0: कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी
0: लोगों ने,
1: जी जी
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, ओ मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रख

0: नाना तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये न और सॉफ्ट, उसी को बुलाना तो आ जा आ जा।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधार का
0: सीखा,
1: जी, ये पंचम धाम में ही ये
0: या
1: गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझ जिसे
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहाँ कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है,
0: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
0: हाँ,
1: प्यार मिला, स्नेह मिला,
0: बहुत
1: उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके,
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हा,
0: थी
1: हा, हा,
0: है ना, बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: वाह,
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू
1: जी
0: गाऊंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: नहीं। मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है अब,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक पुश
1: जी
0: बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सीखी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही
0: डा
1: गा
0: रा, हाँ
1: देते हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की,
1: जी
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा,
1: ओहो,
0: तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: चंद्रा की
1: करम,
0: फिल्म
1: धर्म करम भी था,
0: धर्म
1: एक दिन
0: करम
1: बिक जाएगा माटी
0: माटी
1: के
0: के
1: मोल,
0: मूल,
1: मुकेश अंकल के
0: बिल्कुल,
1: साथ।
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी
1: ओ
0: शक्ति
1: हो,
0: हमें देना दाता,
1: जी जी
0: जिसमें
1: जी
0: आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: जी
0: गीत
1: जी
0: गाया है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र
1: बहुत
0: में। वो
1: बहुत।
0: भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया? इस गीत को गाना आसान नहीं था।
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे। फिर मैं गाती थी एक तू ना, ये मेरा मेरा चॉइस रहा
0: जी
1: है।
0: जी
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती
0: अच्छा
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी,
0: जी
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है।
0: विदा है।
1: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था
0: जी
1: प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन

0: तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे हाँ,
1: हाँ
0: इवन
1: हाँ
0: रिकॉर्डिंग्स में।
1: हाँ
0: वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या
0: उस,
1: बात है,
0: वहां मैंने ये एक और मैं
1: सबक
0: बहुत नोट
1: सीखा
0: करती थी ये
1: जी
0: सब
1: जी
0: बातें
1: ये नम्रता
0: कि ये
1: विनम्रता
0: नम्रता होना, अपनी कमजोरी को
1: समझते
0: समझना,
1: हुए,
0: जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती
1: और एक बच्चे के सामने जब
0: है।
1: कहा जा
0: बिल्कुल
1: रहा हो उसको
0: बिल्कुल।
1: अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही बात
1: तो
0: इस गाने में
1: जी
0: भी हुई कि
1: जी
0: मुकेश चंद्र तरमपम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज बच्चा तरमपम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा भाभी बता बेटा कैसे बोल रही है, तरमपम तरमपम। नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं
1: बात है,
0: तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे। चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस
1: बिल्कुल,
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल, इसको इसको
0: है ना,
1: स्वीकार कर
0: ये
1: लेना
0: ईमानदारी
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
1: जी जी
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए कि
1: जी
0: क्यों, मैं समझती हूँ हर हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का,
0: वो जो अंतरा है कि
1: हाँ
0: ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले।

0: एक दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी के
1: के
0: मोल, ये
1: मोल।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी।
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें
1: जी
0: समझ
1: जी
0: आती है कि किस तरह से जीवन को जीना
1: जी
0: चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म
1: जी
0: अंकुश
1: जी
0: की,
1: जी
0: इतनी शक्ति हमें देना
1: जी
0: दाता, ये
1: जी
0: आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
0: जी शिवांगी
1: जो
0: दी
1: शक्ति कपूर जी की बीवी
0: बीवी है,
1: और श्रद्धा
0: पद्मिनी जी की
1: कपूर,
0: बहन है,
1: और श्रद्धा
0: हाँ
1: कपूर की
0: मम्मी
1: माँ,
0: है, हाँ
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी।
0: जी
1: मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी
0: और
1: जी।
0: उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती
1: और
0: हैं।
1: नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: क्या थी उनके
0: जी
1: आगे, और क्या हूं,
0: बिल्कुल
1: इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, ए के नडियाड वाला फिल्म्स, आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम
0: जी
1: किया,
0: जी
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है और
1: मैं,
0: ताउम्र
1: हाँ।
0: याद रहने वाली बात
1: और
0: है
1: ये
0: वो तो।
1: आखिरी गीत, इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया,
0: बिल्कुल
1: मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनके शुरुआती
1: है
0: दौर
1: ना,
0: में।
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद, यस यस
0: इसमें से आप
1: यस।
0: हमारे लिए
1: तो ये हमने
0: लकी
1: सोचा ही
0: हैं।
1: नहीं था
0: जी।
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
0: बिल्कुल
1: गया,
0: बिल्कुल। और
1: इतनी।
0: पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके
1: हाँ
0: साथ गाना
1: मैं
0: आपको मिला।
1: बिल्कुल, और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
0: जी, वो
1: थी,
0: पुष्पा जी की
1: है
0: ही
1: ना।
0: आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: जी मेरा ही
1: कीजिएगा
0: सवाल
1: जरूर,
0: है,
1: तब मैं आपको
0: जी मेरा
1: बताऊंगी
0: ही
1: कि
0: सवाल
1: क्या
0: है।
1: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए।
1: बस वो गाना
0: जी
1: सुन,
0: जी
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
0: करते
1: हैं,
0: हैं।
1: हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
0: जी
1: बैंक में, सिर्फ
0: जी
1: आइएगा
0: जी
1: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
0: जी
1: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
0: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता
1: देखिए।
0: है। मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को हर घोषक ने बजाया है।
1: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
0: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
1: कितने गुणी, बाप रे,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे और इस बारिश के मौसम में खुद के स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है उसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए।

और सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी। चलिए आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी बातें होंगी खास विषय से जुड़ी, जिसमें होंगी ढेर सारी जानकारी और साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज दिन है शनिवार और शनिवार को होता है हमारा खास क्रम विश्व घटना चक्र, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते विश्व में घटित घटनाओं की जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ।

साथियों, अगर किसी शहर की सुबह चिड़ियों की चहचहाट से नहीं बल्कि एक भयानक धमाके से हो, अगर कुछ ही क्षणों में घर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब राख में बदल जाएं, और अगर उस एक पल का असर केवल आज तक नहीं सीमित ना रहे बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई दे, सवाल है क्या ऐसी दुनिया हमें अपने परिवार और खुद को चाहिए होगी? और इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज के समय में कुछ देश ऐसी ही सुबह देखते हैं। जिनकी सुबह परमाणु हथियारों और युद्धों की आवाजों से होती है, और ऐसे देश भी हैं जहां कई साल पहले हुए परमाणु हमले का नतीजा आज तक उनकी पीढ़ी झेल रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हर देश खुद को शक्तिशाली बनाने की होड़ में है, परमाणु हथियारों का परीक्षण युद्ध कर रहे हैं, नए नए युद्ध के लिए हथियार बना रहे हैं, जिसका नतीजा उनके खुद के देश या अन्य देश भुगत रहे हैं। और ये समस्या आज विश्व भर पर तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण नुकसान हर किसी को हो रहा है। और फ्रेंड्स, इन्हीं सब समस्या को देखते हुए और विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन चुना गया। आज 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक का विकास मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, मानव जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं। साथ ही परमाणु हथियार दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियारों में से गिने एक होते हैं। इनका इस्तेमाल केवल तत्काल भारी जनहानि ही नहीं कर सकता बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों पर भी लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। और दोस्तों, इतिहास में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों ने दुनिया को परमाणु हथियारों के भयावह का प्रत्यक्ष अनुभव कराया भी है। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और विस्फोटों के बाद भी समस्या बनी रही। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जोड़ा है। 26 सितंबर का यह दिन इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने वाला दिन है, जब परमाणु हथियारों के खतरे पर चर्चा करने और निस्त्रीकरण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का अवसर देती है। दोस्तों, परमाणु निस्त्रीकरण का अर्थ केवल हथियारों को नष्ट करना नहीं है, इसका व्यापक अर्थ है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बनाना जहां देशों के बीच विश्वास बढ़े, तनाव कम हो और विवादों का समाधान बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से किया जाए। साथ ही परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हमें संदेश देता है कि मानवता का भविष्य केवल शक्तिशाली बनने में नहीं बल्कि जिम्मेदार और शांतिपूर्ण बनने में है। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें इस विषय से जुड़ी, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हर दंपत्ति को अपने परिवार के आकार और बच्चों के बीच अंतर के बारे में सोच समझ कर निर्णय लेने का अधिकार मिले, अगर हर महिला और पुरुष को गर्भ निरोधक साधकों का सही और सुरक्षित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो, और अगर हर बच्चे का जन्म उसकी बेहतर देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा की तैयारी के साथ हो, तो सवाल क्या है, ऐसी दुनिया में हम अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं चाहते? शायद हमारा जवाब होगा, बिल्कुल चाहते हैं। और इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के बेहतर भविष्य, परिवार की आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। फ्रेंड्स, परिवार नियोजन में महिलाओं को अपनी शिक्षा, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार अवसर मिलता है। वहीं माता पिता बच्चों को बेहतर देखभाल, पोषण और शिक्षा की तैयारी भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बात इस विषय से जुड़ी, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं दूसरी चर्चा की ओर, किसी और विषय के साथ। साथियों, अब हम बात करेंगे महान संत, समाज सुधारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के श्री नारायण गुरु जी के बारे में, जिनकी जयंती केरल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। फ्रेंड्स, श्री नारायण गुरु जी का जन्म 1856 में केरल में हुआ था। उनका जीवन ऐसे दौर में शुरू हुआ जब समाज के जातिवाद, असमानता और छुआछूत जैसी कुरीतियां गहरी थीं। नारायण जी इन परिस्थितियों को केवल देखा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बदलने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिक्षा, समानता, स्वच्छता, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जरूरतों को समाज के सामने जागरूक किया, समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बने। दोस्तों, इसीलिए आज ना होकर भी हमें ये याद है और हमेशा रहेंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ हमारी इन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका घर आंगन साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे। लेकिन क्या हम अपने देश, अपने आसपास की गलियों और रोड के बारे में ये सोचते हैं? हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे रोड पर जो कूड़ा फेंका है, या फिर अगर कोई फेंक रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करें या साफ करने की कोशिश करें, या हम खुद जो हमारे कूड़े होते हैं उनको सही स्थान पर फेंकते हैं? नहीं, हम ऐसा बहुत से कम लोग होते हैं जो ये ऐसा काम करते हैं। जो कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए स्वच्छता जितनी ज़रूरी है उतना हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। और एक देश का नागरिक होने के नाते ये हर किसी का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने घर के साथ साथ अपने देश को भी साफ सुथरा और स्वच्छ रखे। और इसका सपना हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी देखा था। दोस्तों, गांधी जी का सपना स्वच्छता केवल घर और आसपास की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन, अच्छे समाज और जिम्मेदार नागरिक का आधार भी है। गांधी जी का मानना था कि जिस प्रकार हम अपने शरीर और घर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार हम अपने गांव, शहर, सड़क, विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों को भी साफ रखना चाहिए। फ्रेंड्स, गांधी जी ने स्वयं सफाई के कार्य को महत्व दिया और लोगों को ये संदेश दिया कि सफाई किसी एक व्यक्ति या वर्ग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उनका जीवन ये बात का उदाहरण था कि वो स्वच्छता को लेकर भाषणों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी अपनाते थे। फ्रेंड्स, उनके विचारों में स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान से भी था। गंदगी से बीमारियाँ फैलती हैं और समाज का वातावरण प्रभावित होता है, इसलिए गांधी जी स्वच्छ वातावरण को स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र की आवश्यकता बताते थे। आज जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो गांधी जी के विचार और उनकी प्रासंगिकता को कैसे भूल सकते हैं? दोस्तों, केवल सफाई अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। कूड़ा इधर उधर ना फेंकना होगा, कूड़ेदान का उपयोग करना होगा, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना होगा, पानी को प्रदूषित करने से रोकना होगा और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना होगा। फ्रेंड्स, गांधी जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि स्वच्छ भारत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास की सफाई को अपना कर्तव्य समझेगा, तभी स्वच्छता एक अभियान से आगे बढ़कर हमारी जीवन शैली बनेगी। फ्रेंड्स, गंदगी करना किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, बल्कि हर एक व्यक्ति का कार्य होता है। और उससे भी ज़्यादा गलत वो व्यक्ति होता है जो उस गंदगी को होते हुए देखता है। इसलिए अगर हम अपने आसपास किसी को भी कूड़ा या गंदगी करते देखते हैं, तो ये एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें और उसके प्रति उसको जागरूक करें। फ्रेंड्स, न गंदगी करेंगी न गंदगी करने देंगे, अपने घर के साथ साथ अपने समाज और देश को भी स्वच्छ बनाएंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं अपने आज के खास क्रम की ओर, जो है विश्व घटना चक्र। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्च स्तरीय सप्ताह हुआ, जिसमें लगभग 130 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख शामिल हुए। यूक्रेन, मध्य पूर्व, एआई और वैश्विक व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे हैं। दोस्तों, एआई को लेकर वैश्विक बहस तेज। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के विकास, सुरक्षा और वैश्विक नियमों की आवश्यकता पर चर्चा हुई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चलिए फिर से चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम मौसम का हाल तो देख ही रहे हैं। कभी इतनी तेज बारिश हो रही है तो कभी गर्मी पड़ने लग रही है। ऐसे मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में स्वच्छता का खास ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, गर्म पानी पीजिए, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिए, बारिश में ना भीगें और घर से बाहर निकलते समय अपने पूरे शरीर को ढककर कपड़े पहने। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी भी आपके शरीर में थकान या बीमारी जैसा लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर की सलाह लें और पूरा आराम करें और काढ़ा बनाकर पिएं, हल्दी वाला दूध पिएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अपनी रेडियो फ्रेंड को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, जो अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

शब्द दिखावा कर सकते हैं, पर स्वभाव कभी झूठ नहीं बोलता। बहनों नमस्कार, आज दिन है शनिवार और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सरिता, लेकर हाजिर हूँ आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। बहनों आपको तो पता ही है कि कार्यक्रम का इंतजार तो आपको बेसब्री से रहता है, तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और कार्यक्रम में गीत संगीत मनोरंजन के साथ होगी चर्चा जो जानकारी से भरी होती है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी बहनों का हाल समाचार तो ले लें। बहनों आप सब कैसी हैं? अच्छी हैं ना? अपने परिवार के साथ आप अपना भी ख्याल जरूर रखें। बहनों परिवार किसी एक सदस्य से नहीं बनता, बल्कि सदस्यों से परिवार बनता है, और आप हैं जो परिवार के सभी एक सदस्यों की पसंद और नापसंद अच्छे से जानती हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार और सभी की बातें मानना और अनुशासन में रहना यह भी सिखाती हैं। तभी तो कहा जाता है कि एक इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है और परवरिश से।

0: बहनों, परिवार मनुष्य के जीवन की पहली पाठशाला है। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार से ही बोलना, व्यवहार करना और जीवन जीने के तरीके सीखता है। परिवार के वातावरण का बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे संस्कार और अनुशासन व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देते हैं और एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। बहनों, परिवार के संस्कार मनुष्य के चरित्र की नींव होती है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, सच बोलना, विनम्रता से बात करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना अच्छे संस्कार के उदाहरण हैं। माता पिता और परिवार के बड़े सदस्य अपने आचरण द्वारा बच्चों को ये गुण सिखाते हैं। बचपन में मिले अच्छे संस्कार जीवन भर व्यक्ति के साथ रहते हैं। बहनों, अच्छे संस्कार और जीवन जीने का सही तरीका बिना अनुशासन के नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ नियम और समय का पालन करना है। समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, विद्यालय के नियम का पालन करना, स्वच्छता रखना और अपने काम को समय पर पूरा करना अनुशासन के उदाहरण है। बहनों, अनुशासन से व्यक्ति में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और समय का महत्व समझने की भावना विकसित होती है। बहनों, एक परिवार ही होता है जो बच्चों में संस्कार और अनुशासन विकसित करता है। बहनों, जिस परिवार में अच्छे संस्कार और अनुशासन होते हैं, वहाँ प्रेम, सहयोग और शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसे परिवार एक बच्चे समाज की नींव भी रखते हैं और अच्छे व्यवहार का परिचय भी देते हैं, क्योंकि संस्कार हमें अच्छा इंसान बनाता है और अनुशासन हमें अपने लक्ष्य की ओर नियमित रूप से आगे बढ़ना सिखाता है। इसलिए तो बहनों कहा जाता है कि अच्छे संस्कार और अनुशासन जीवन की अमूल्य पूंजी है। इनका विकास बचपन से ही परिवार में होना चाहिए। परिवार यदि बच्चों को प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और अनुशासन का महत्व समझाए तो वे आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में अच्छे संस्कारों और अनुशासन को अपनाकर सुखी परिवार तथा बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। बहनों, जीवन एक यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन हम जीवन की यात्रा से हटकर कुछ घूमने फिरने की बात करेंगे। यात्रा मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाती है और उसे इस दुनिया से परिचित कराती है। पर्यटन केवल घूमने फिरने का साधन तो है ही, साथ ही यह हमें विभिन्न स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास, कला, संस्कृति और परंपराओं को समझाने का अवसर देता है। बहनों, पर्यटन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों और देशों के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। इसी पर्यटन के महत्व को समझने और लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर यानी कि कल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करना और विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को समझने के लिए प्रेरित करना है। भारत एक सुंदर और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, ताजमहल, वाराणसी, जयपुर, कश्मीर, गोवा, केरल और राजस्थान। इन स्थानों पर देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटन घूमने आते हैं। बहनों, पर्यटन से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। इससे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है तथा लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। विदेशी पर्यटकों के आने से देश की संस्कृति और कला को भी विश्व स्तर पर पहचान मिलती है। बहनों, अगर हम कहीं घूमने जाएं तो हमें स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए, ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, और वहाँ से बहुत सारी खूबसूरत यादें हमें अपने साथ लानी चाहिए। तो बहनों, इसी विशेष दिन पर सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है सोनभद्र के धरोहर, और इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं दीपक कुमार केसरवानी, साहित्यकार सोनभद्र। तो सुनते हैं ये भेंट वार्ता सोनभद्र की धरोहर।
1: आइए हम सोनभद्र की यात्रा पे चलते हैं और सांस्कृतिक विरासतों का दर्शन करते हैं।
2: सोनभद्र नगर में हमारे साथ पर्यटक दल के सदस्यों के अलावा स्थानीय जन भी थे, जो हमारे इस यात्रा में सहायक सिद्ध हुए। सोनभद्र नगर का पुराना नाम रावर्ट्सगंज है। यह नाम मिर्जापुर के उप जिलाधिकारी W.B. रावर्ट्स के नाम पे आधारित है। इस अंग्रेज अधिकारी ने सन 1846 में अदलगंज निवासी भूरालाल केसरवानी के सहयोग से रावर्ट्सगंज नगर की स्थापना किया था। इस नगर के प्रथम नागरिक जगन्नाथ साव को बनाया गया था। इस नगर का स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1857 के प्रथम युद्ध में वीर कुंवर सिंह के आगमन के समय अंग्रेजों के खिलाफ इस क्षेत्र की जनता ने उनका सहयोग किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 1921 के आंदोलन से लेकर 1947 तक के आंदोलन में इस क्षेत्र के व्यापारी, रईस, दुकानदार आदि ने सहयोग किया था। रावर्सन नगर के बद्री नारायण जी को इस क्षेत्र का प्रथम टाउन एरिया चेयरमैन चुना गया था एवं इस नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बलराम दास केसरवानी, अली हुसैन उर्फ बेचू, चंद्रशेखर वैद्य, शिवशंकर प्रसाद केसरवानी, मोहनलाल गुप्ता आदि युवाओं के सहयोग से दुद्धी रॉबर्टसगंज में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाया। 15 अगस्त 1947 को इन महान विभूतियों ने एक उच्च शिक्षण संस्थान के स्थापना का संकल्प लिया और उसी दिन मिडिल स्कूल का 2 कमरा किराए पर लेकर स्कूल का संचालन आरंभ किया। आज यह कॉलेज राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज के नाम से संचालित है। 5 अक्टूबर 1928 को इस नगर में 9 टाउन एरिया की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मनोनीत हुए बद्री नारायण जी। बद्री नारायण जी के बाद आजादी प्राप्त हुई और इसके पश्चात क्रांतिकारी सेनानी बलराम दास केसरवानी अध्यक्ष चुने गए। हमारा दल पदयात्रा करते हुए चौराहे पर जा पहुंचा, जहां पर सुप्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर, सिद्धि हरण हनुमान मंदिर, दुग्धेश्वर महादेव, शनिदेव, रानी सती मंदिर, प्राचीन बाल हनुमान मंदिर से लौटकर हम स्वर्ण जयंती चौराहे पर पहुंचे, जहां पर 1913 में निर्मित चौधरी चरण सिंह

चाचा नेहरू पार्क पहुंचकर वहां के सौंदर्य को देखा, निहारा और यहां पर स्थापित गौरव स्तंभ जिस पर रॉबर्टसन ब्लॉक के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम उत्कीर्ण है, सेनानियों के नाम वाले इस ऐतिहासिक स्तंभ के समक्ष हम सभी ने नमन किया और आगे बढ़कर हम आरटीएस क्लब के सामने स्थापित आदर्श नगर पालिका के कार्यालय में पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी की आदमकद की प्रतिमा स्थापित थी। हमारे सर इस प्रतिमा के आगे झुक गए। इस महान सेनानी के आगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कृत्यों को याद करके इसके आगे चले हम इस स्वतंत्रता संग्राम के स्मारक राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज के पास, जहां के गेट को हमने शीश नवाया और हमने स्मृति स्वरूप फोटो खिंचवाया। कचहरी पहुंचकर हमने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर लोक देवी गौहेर माई का दर्शन किया। पर्यटन स्थान नंदेड़ बाबा के मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां पर दक्षिणेश्वर काली माता का दरबार, कैलाश सरोवर में स्थापित भव्य भोलेनाथ की मूर्ति एवं आगे एक मनमोहक गुफा भी स्थित थी। हम सब ने सबसे पहले माता काली का दर्शन किया और हम जा पहुंचे गुफा के पास, जहां के दोनों गेट पर शेर मुख फाड़े खड़े थे और गुफा के शीर्ष पर आकर्षक प्राकृतिक मुद्रा में लंगूर बनाए गए थे। उस गुफा में प्रवेश किए, जहां आड़े तिरछे और टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए भगवान के दर्शन करते हुए हम गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचे और हम पुनः जा पहुंचे माँ काली के दरबार में। इस प्रांगण के सुलभ्य हरितमायुक्त वातावरण में स्थापित दंडायत बाबा का चौरा, मंगल बाबा, संतोषी माता, विश्वकर्मा जी, हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन किया। हम लोक देवता लाखन बाबा, जोगिया वीर बाबा, हरदा बाबा, सीहोर बाबा के चौरा का दर्शन करते हुए पूछते पूछते आ पहुंचे लोक वार्ता शोध संस्थान द्वारा स्थापित संग्रहालय में। प्रस्तर काल एवं पुरातत्व काल के संग्रहित यहाँ के संग्रहालय में नमूने प्रसिद्ध हैं। हम जैसे ही गेट पर पहुंचे, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी मिले और उन्होंने हमारा परिचय जाना और हमें संग्रहालय के कार्यालय में ले जाकर बैठा दिया। परिचय के दौरान हमने जाना कि ये सोनभद्र जनपद के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर अर्जुनदास केसरी जी हैं। केसरी जी ने हमें अपने संग्रहालय में संग्रहित पुरातात्विक, ऐतिहासिक, आदिवासियों के दैनिक जीवन की वस्तुओं एवं फोटोग्राफ्स, पेंटिंग के माध्यम से सोनभद्र के सांस्कृतिक धरोहरों का परिचय कराया। हमारी इच्छा थी कि हम और देर तक रुकें, लेकिन हमारे पास समय नहीं था और हमें आगे की यात्रा पे भी जाना था, सो हमने लेखक से अनुमति मांगी और कुछ किताबें क्रय करके हम आगे बढ़े। रोमांचित एवं यात्रा के प्रति तीव्र उत्कंठा दिल में लिए हम जैसे आगे बढ़े, वैसे रेलवे क्रॉसिंग के पास जाम आ गया। जाम के कारण हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां के रेलवे ब्रिज से हमने रॉबर्ट्सगंज के नगर का सुरम्य फोटो खींचा। फिर जाम खुल गया और हम आगे बढ़ गए, लेकिन जाते जाते हमारी निगाहें वहां के ऊपरी दीवार पर पड़ी। उस पर खुदा था सन 1954। बताते हैं कि सन 1954 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था और बाद तक, यानी कि गुलामी की अंतिम काल तक भी यह रेलवे स्टेशन दंश झेलता रहा। कुछ वर्षों पूर्व सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से इस रेलवे स्टेशन का नाम सोनभद्र पड़ा। हम खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए मोबाइल में फोटो कैद करते हुए जा पहुंचे विजयगढ़ दुर्ग की ओर और नई बाजार को पार करते हुए धंधरौल डैम के पास पहुंचकर
हमने

0: थोड़ा सा विश्राम किया। यह डैम घाघर नदी पर 1917 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। डैम के गेट पर एक शिलापट लगा हुआ है जिस पर इंजीनियरों का नाम उत्कीर्ण है। धनरौल बांध के पास विजयगढ़ दुर्ग की निगरानी के लिए बने ऐतिहासिक वाच सेंटर को भी हमने देखा और दूर से ही विजयगढ़ दुर्ग को देखकर रोमांचित हो उठे। नवीं शताब्दी में निर्मित एकमुखी शिवलिंग का मंदिर, जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर के प्रतिरूप, सहस्र शिवलिंग, गणेश जी, विष्णु जी, शंकर जी, गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां आदि यहाँ के मऊ गांव में भग्नावशेष और समुचित अवस्था में अवस्थित हैं। भग्नावशेष देश के आतंकवादियों के आतंक का नमूना प्रस्तुत कर रही थी। धार्मिक क्रूरता की प्रत्यक्ष प्रमाण एक पहाड़ी पर अवस्थित भव्य मंदिर में जैन मंदिर में महावीर स्वामी से गौतम बुद्ध बने धार्मिक विरूपता का के बावजूद शांति का संदेश दे रहे थे। पद्मासन मुद्रा में बैठे महावीर स्वामी की शांति के संदेश को उपहास स्वरूप उड़ाया जा रहा था आधुनिक मानवों द्वारा। मूर्तियों के धर्मांतरण का प्रत्यक्ष उदाहरण पहाड़ी के उतरने के बाद हमें महसूस हुआ और हम आ पहुंचे पुरातत्व विभाग द्वारा निर्मित संग्रहालय के सामने। नष्ट भ्रष्ट होते ऐसे संग्रहालय के भवन को हम देखते रहे। दरवाजे पर बड़ा सा ताला बंद था। इसे देखकर हमें याद आया अरहर की टट्टी, गुजराती का ताला। इस कहावत को यह संग्रहालय चरितार्थ कर रहा था। हम बड़े ही निराश हुए और हमें ऐसा लगा कि इस देश में पुरातात्विक धरोहरों की क्या दुर्दशा है। यही विचार करते हुए खिन्न मन से हम विजयगढ़ दुर्ग के रास्ते पर पहुँचे। मौर्यकालीन निर्मित इस दुर्ग की स्थापना वास्तुकला परिवर्तन की साक्षी थी। काशी के गढ़वाल नरेश महाराजा विजयचंद के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण हुआ था। हम पीछे के दरवाजे से जा पहुँचे विजयगढ़ दुर्ग पर, जहाँ पर न सूखने वाला रामसागर तालाब अवस्थित था। हस्तशाला, रंग महल, शीश महल एवं किले के अन्य भूभागों का हमने सौंदर्य दर्शन किया। यहाँ से हमने प्रकृति का नज़ारा भी देखा जो हमें विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। चंद्रकांता के इस दुर्ग पर हम चंद्रकांता संतति की कहानियों के बारे में सोचने लगे और हमें ऐसा महसूस हुआ कि क्या चंद्रकांता हमारे सामने आएगी, क्या नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह हमें देखेंगे। प्रेम और कलम की जादूगरी से पंडित देवकी नंदन खत्री जी ने एक रचना किया जो पूरे विश्व भर में चंद्रकांता के नाम से प्रसिद्ध होगा और इस प्रसिद्धि ने लोक मानस एवं पाठकों के मन में ऐसी इच्छा शक्ति पैदा कर दिया कि गैर हिंदी भाषी लोगों ने भी चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी। हम महसूस कर रहे थे कि हमें कहीं किस्म किस्म के महल, किस्म किस्म की पेचदार गलियां, खुफिया रास्ता आदि देखने को मिले एवं नाजिम और अहमद जैसे करामाती अय्यार हमारे सामने आ जाएं और यकू कहता हुआ क्रूर सिंह हमें दिखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो हमें चंद्रकांता दिखी, न वीरेंद्र विक्रम सिंह एवं चंद्रकांता के अन्य पात्र भी कहीं दूर दूर तक हमें नहीं दिखे। हम आगे बढ़े।
1: बहनों, अभी आपने सुना वार्ता जिसका विषय था सोनभद्र की धरोहर और इसकी जानकारी दे रहे थे दीपक कुमार केसरवानी जो एक साहित्यकार हैं। उन्होंने हमें सोनभद्र के अनेक पर्यटन स्थानों के बारे में बताया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहनों, आप चलिए चलते हैं अपने मनोरंजन की दुनिया में और आप सुन रही हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सरिता। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, गाना तो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ। बहनों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बहनों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल पेट भरना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा भोजन करना आवश्यक है जो शरीर को भरपूर पोषक दे। भारत की पारंपरिक खाद्य संस्कृति में बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का और कोदो जैसे मोटे अनाजों का विशेष महत्व रहा है। ये अनाज पोषक तत्व से भरपूर होने के साथ साथ हमारे भोजन को संतुलित और पौष्टिक भी बनाते हैं। आज जब स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक आहार की आवश्यकता बढ़ रही है, तब मोटे अनाज फिर से हमारे भोजन की थाली में महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं। इसलिए इन्हें बेहद पोषण का आधार माना गया है। बहनों, अक्सर ये ध्यान में आता है कि मोटे अनाज क्या हैं। मोटे अनाज वो हैं जिनमें फाइबर, प्रोटीन, खनिज और अन्य पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में हैं। बहनों, मोटे अनाज का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में करना चाहिए। रोटी, दलिया, खिचड़ी,

उपमा, इडली और कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन इनसे बनाए जा सकते हैं। उन्हें अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार भोजन में शामिल करना आसान है। बहनों, मोटे अनाज हमारे पारंपरिक भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पौष्टिक होने के साथ साथ विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में उपयोगी हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में मोटे अनाज को उचित स्थान देकर बेहतर पोषण, स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।

बहनों, भोजन के साथ साथ हमें साफ पानी का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। पानी की कमी से हमें हमारे शरीर में अनेक ऐसे बीमारी हो जाती है जो उपचार के लायक नहीं रहती है, या तो हमें बहुत ही परेशानी होती है। पानी कम पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी पूर्ति हमें अस्पताल में जाकर पानी चढ़वाने से होती है। लेकिन बहनों, अगर हम अपने पानी पर विशेष ध्यान दें, हमें दिन में जितने गिलास पानी पीने हैं वो हमें आवश्यकता के अनुसार हम उनका प्रयोग करें, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो पानी के माध्यम से हमारे शरीर से वो निकल जाते हैं। लेकिन हमें साफ पानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, और साथ ही बहनों, प्रयोग तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन पानी की फिजूल खर्ची भी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल हमें संरक्षित करके रखना चाहिए, ताकि हमें हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो उपलब्ध हो सके। बहनों, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हम फिर से आपसे मिलने आएंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक अपनी रेडियो सखी सरिता को दीजिए इजाजत। बहनों, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, जो अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खड़गपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। राज्य के करीब सज्जू जिलन में आज लगतारे तिसरका दिन ने बरखा के सिलसिला जारी बा। कई जगहों पर भारी बरखा तेज बयारी चलने से लोगों की जिंदगी प्रभावित भई है। कई जिलन में पेड़ गिरले से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ल बा। बरखा तेज बयारी से कुछ जिलन में फसलियों प्रभावित भईल है। खराब मौसम के नाते आज कई जिलन में कक्षा 1 से 12वीं लेके स्कूल कॉलेज बंद रहल। मौसम विभाग के मुताबिक 63 जिलन में सामान्य से बेसी बरखा भईल है। एगो रिपोर्ट।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सामान्य से 19 गुना अधिक बारिश का आकलन किया गया है। प्रदेश के साथ ही नेपाल में भारी बारिश के चलते कुछ जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि भी दर्ज की गई है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रामघाट की दुकानें खाली करा दी गई हैं। नेपाल की पहाड़ियों में वर्षा होने और वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण उसी नगर जिले में गंडक नदी उफान पर आ गई है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट करते हुए लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।

0: उन्होंने अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का यथा शीघ्र सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने आमजन से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। समाचार कक्ष से रितेश।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कह रहे हवें। उनका जतरा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प अलगदारे जनसेवा के भावना से प्रेरित रहल ह। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार के ए पहलन से लोगों के जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहल ह। हमन के खास श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहल हई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आयल बदलावन के बारे में।
2: भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने व्यवसायिक नियामक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सुधार किए हैं। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2014 में 142वें स्थान से सुधरकर 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईज डूइंग बिजनेस और रिफॉर्म की वजह से भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन चुका है।
3: ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है।
2: गौतम बुद्ध नगर की खुशबू सिंह ने बताया कि व्यापारी सुगमता से निवेश का बेहतर माहौल बना है।
4: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चाहे वो बैंक से लोन का हो या कंप्लायंसेस को फॉलो करना हो या कोई लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन हो, आज की तारीख में इतनी सुविधाएं, किसी को भी बिजनेस अपना शुरू करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अपने आप को खड़ा कर सकते हैं।
2: भारत के व्यावसायिक वातावरण में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और व्यापार करने में सुगमता में सुधार हुआ है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: प्रदेश के समृद्ध पाक विरासत के वैश्विक पहचान दियावे बदे सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ODOC के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल के शुभारंभ कैले ह। ई पोर्टल प्रदेश के सज्जो जिलन में विशिष्ट पाक परंपरा, स्थानीय व्यंजन, खाद्य उत्पादन आ ऐसे जुड़ल उद्यमियन के एगो साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराई। प्रदेश में 15 अक्टूबर से बिक्री बदे प्रदर्शित चाहे भंडारित सज्जो तरह के खुलल मिठाइयन पर उपयोग के आखिरी तारीख लिखल जरूरी हुई। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. रोशन जेकब ए बारे में दिशा निर्देश जारी कैले हवें। निर्देश के मुताबिक दुकानदारन के मिठाई के साथे रखल ट्रे, डिब्बा चाहे औरियो प्रदर्शित जगहिन उकरे उपयोग के आखिरी तारीख अनिवार्य रूप से दर्शावे के हुई। मुख्य सचिव SP गोयल स्कूल कॉलेजन में नियमित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलौले के निर्देश देहले हवे। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के राज्य स्तरीय समिति की बैठकी में मुख्य सचिव बतौले कि शैक्षणिक संस्थानन के लगे 500 मीटर के क्षेत्र के ड्रग मुक्त क्षेत्र बनावल जाए। वहां के कहनी कि ई पहल के कड़ाई से लागू कल जाए। जापान के नागोया में हो रहल एशियाई खेलन में भारत आज 1 दिन में कबड्डी के दोनों स्वर्ण पदक जीत लेलस। भारतीय महिला कबड्डी टीम रोमांचक फाइनल मुकाबला में ईरान के 37-34 से हरौलस। वही पुरुषों टीम ईरान के 40-34 से हरा के स्वर्ण पदक जीतलस। एशियाई खेलन में भारत के अब 4 स्वर्ण पदक हो गए। उहर भारत के सावन बरावल पुरुषन के मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीत के इतिहास रच देले हवे। इस स्पर्धा में भारत 44 साल बाद पदक जीत रहे हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओवरा केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए हम आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आप सभी आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। रात्रि 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत और रात्रि 8:15 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 8:00 कार्यक्रम होगा सुगम संगीत और रात्रि 7:31 पर होगा कार्यक्रम सबरस।

शाम 6:10 पर होगा कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 पर होगा कार्यक्रम किसानवाड़ी। यह कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

अब एक सूचना। खोए व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सोनवानी थाना अनपुरा जनपद सोनभद्र जो कि दिनांक 29/3/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 29 वर्ष लंबाई 5 फीट हुलिया है। गोरा रंग लंबा चेहरा एक हरा मजबूत जिस्म लंबे काले बाल पहनावा है हरा रंग का सूट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। कार्यक्रम विवरण और सूचना समाप्त हुई। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सब पंचन के राम राम।
1: आपो के राम राम भला भैया। पंचेती के भैया देखा डुगडुगी बजल
0: राम राम।
1: और मौसम के मिजाज भैया देखते हुआ आसमान में घना बादल के साथ साथ भैया तेज हवा भी हुए और एक साथ साथ भैया देखा बरखा बुंदी भी रह रह के होखत हुए और इसने में भैया देखा तापमान जोन बाकी एकदम अपने अंचल के गिरल हुए। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री आज के आकल गए हुए और इसने मौसम में बहुत सावधानी हम लोगों के बरतले के जरूरत हुए भैया।
0: खासकर जौन आंधी तूफान हो भैया पेड़ पालों से बच बचा के आसपास छुपे के नहीं है और साथ साथ जौन बाकी नदी नाला जौन हो उसे भी बच के रहे का।
1: बिल्कुल।
0: और यही के साथ साथ ठंड के भी मतलब असर धीरे धीरे कर सकला तो ऐसे पशु लोगों के भी बचा के रख ले के हो अपने तो बच ही के हो बड़ बुजुर्गन के ध्यान रखने की जरूरत हो।
1: एकदम सही कहत हो भला भैया और एक साथ साथ हम लोगन के जौन भी लेखन बचवान हुआ।

0: उनके खास तौर से देखभाल के लिए जरूरत हुए। और ऐसे मौसम में भी देखल जाते हुए कि लड़कन के स्कूल भी बंद हो जाते हुए उन लोगन के शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत हुए। और अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सही जोन बाकी परवरिश तभी
1: बिल्कुल
0: संभव
1: बिल्कुल
0: हो
1: बिल्कुल
0: गया
1: बिल्कुल
0: जब यह देखा सीमित परिवार रहला और छोटा परिवार रहला।
1: बहुत अच्छा आप कहलन कि जौन बाकी देख रेख परवरिश शिक्षा दीक्षा के बाद तो जहाँ कम रही संख्या कम बचवा लोग रही हैं तो उनके देखल जा सकला। जहाँ पहनावा ओढ़ावा के भी बात हो तो पता चल कि छोटा परिवार हो तो लोग के अच्छा असल में हमें अधिभार भी कम पड़ला भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जैसे कि मान लो जौन बाकी अगर छोटा परिवार हो तो कम मेहनत करके चिंता भी कम रही आपस में विवाद भी कम होखी। क्योंकि कई लड़कन कई ठे उल्टा सीधा काम करे तो हमें जौन बाकी आपस में भावक लोगन के भी विवाद होखला भैया।
0: एकदम सही कहत हो
1: तो
0: बोला भैया। और एकरे
1: बिल्कुल
0: साथ साथ भैया देखा आप जोन बाकी कहला कि भैया छोटा परिवार रहला तो हर कुछ संभव हुए। जिसे भैया देखा जोन बाकी लड़ाई झगड़ा भी कम होला। ओकरे साथ साथ भैया देखा एक चीज और देखल जाला कि अपने जीवन में जोन संघर्ष रहला
1: बिल्कुल
0: ओकरे प्रति भैया देखा बहुत भाग दौड़ नहीं। छोटा परिवार रहला तो यूला कि भैया चला जोन बाकी जोन बा ओकरे में जोन
1: उतने
0: बाकी
1: में संतुष्ट
0: हो
1: हो
0: जाए।
1: करके उतने में काम
0: और
1: करेगा
0: बड़ा
1: बिल्कुल।
0: परिवार होके से भैया देखा उनके भविष्य के लेके भैया देखा बहुत चिंता भी रहला। और हर लोगन के भैया देखा अच्छा परवरिश, अच्छा शिक्षा और उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पावला।
1: बिल्कुल ये महंगाई के दौर में शिक्षा दीक्षा के खातिर कागज पत्र खरीदे खातिर चाहे तो जौन बाकी ड्रेस कपड़ा खरीदे खातिर खान पान के खातिर भैया जौन बाकी जहाँ एक भी यो कहल जाला कि जौन उदाहरण देवल जात रहे कई जगह कहानी में
0: हाँ भैया
1: कि एक गधैया जौन बाकी 10 बच्चा पैदा करके और जिंदगी भर भार ढोला भैया।
0: अच्छा अच्छा
1: अब एक शेरनी एक बच्चा पैदा करके आराम से सोवाला भैया।
0: वाह
1: तो
0: भैया
1: निश्चित
0: वाह
1: रूप
0: वाह
1: से जौन बाकी अधिभार लेकर के जौन बाकी चले से बेहतर है कि एक छोटा परिवार और बिल्कुल निश्चित होकर के अच्छा पढ़े लिखे और शेर के जैसा दहाड़े भैया। ये से जौन बाकी हम लोग के अनुकरणीय चीज मतलब लेवे के चाहिए ताकि हम लोग अपने समाज में अपन भी अच्छा से जौन बाकी पढ़ा लिखा के बच्चों लोग से अच्छा अपेक्षा कर सकी और अपना भी स्वाभिमान के साथ रह सकी। ऐसे भैया जौन बाकी ये छोटा परिवार अच्छा पहनान ओढ़ान अच्छा खान पान और अच्छा पढ़ाई लिखाई भैया
0: एकदम
1: ऐसे
0: सही
1: जौन
0: कहा
1: बाकी अच्छा परवरिश हम लोग कर सकीला
0: एकदम
1: बिल्कुल।
0: सही कहा थोड़ा बोला भैया। शिक्षा के बात कहला तो भैया देखा कहल गेल हुए कि शिक्षा भैया देखा वो शेरनी के दूध हुए
1: क्या
0: कि भैया
1: बात है
0: देखा
1: भैया।
0: जो जितने जोन बाकी ओकरा फी उतने भैया देखा दहाड़ी। और निश्चित रूप से भेंट वार्ता क्रम में सीमित परिवार स्वस्थ समाज एक बारे में डॉक्टर रमेश कुमार मिश्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र से हुअन अपन सुरसरी द्विवेदी बहन जोन बाकी बातचीत करत हुअन और हम लोगन सुनल जाए भैया।
1: तो भैया सुनाओ मैं
2: जब भी किसी शहर, नगर या क्षेत्र के विकास की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो खुशहाल परिवार की नींव सही समय पर सही फैसले से जुड़ी होती है। हमारे सोनभद्र जनपद के दूर दराज के गांवों, पहाड़ों और कस्बों तक स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही हैं और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की इसमें कैसी भागीदारी है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार मिश्र जी से चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: जी नमस्ते।
2: डॉक्टर साहब आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय परिवार नियोजन जो सीधे सीधे हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जरूरी है। अगर हम अपने सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहाँ सुदूर ग्रामीण और जनजातीय अंचल है। स्वास्थ्य विभाग जनपद वासियों को जागरूक करने और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है?
3: पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद वासियों को मेरा प्रणाम। सुरसरी जी हम देते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग जनपद सोनभद्र हर स्तर पे इस पे प्रयासरत है। एक्चुअल में हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या जो हमारे सीमित संसाधन हैं उसका उपयोग किस तरह से कर रही है जिससे संसाधन हमारे कम न पड़ने पाए और जनसंख्या बढ़ने के कारण तमाम चीज़ें और होंगी जिसको रोकने के लिए हम दो प्रकार से कार्यरत हैं। एक

0: तो अस्थाई और एक अस्थाई उपाय हम देते हैं। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सा केंद्रों पर ये उपाय उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारी 7 कार्य कर रही ANM, स्टाफ नर्स, आशा बहू, इन सबके साथ, इन सबके सहयोग से हम ऐसा कुछ कर रहे हुए हैं कि इसे एक सुगम उपाय महिलाओं को बिना संकोच के और पुरुषों को भी उपलब्ध है।
1: जी, आपने महिलाओं की बात करी तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं तमाम चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन के संसाधनों पर बात करने में संकोच करती हैं। क्यों ना उनके घर में अपनी आशा बहन जाएं, ANM दीदी जाएं, फिर भी इस पर उन्हें ऐसा लगता है कि बात करना बहुत जरूरी नहीं है। ये और परिवार नियोजन ही नहीं, महिलाओं की जो कुछ बीमारियां हैं उसको भी वो तब बाहर लाती हैं जब बिल्कुल उनके बस पे के बाहर हो जाता है या किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाती हैं। तो हम आज चूंकि परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, तो मैंने सुना है विभाग में स्वास्थ्य केंद्रों पर एक बहुत ही आसान और देखने वाला मॉडल जिसे सुगम डिस्प्ले मॉडल सुना जा रहा है, तो सर बताइए ये क्या है एक्चुअली?
0: सुगम डिस्प्ले मॉडल के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर ANM, आशा बहू, इनकी उपस्थिति निश्चित कराई गई है सरकार द्वारा। सुगम डिस्प्ले मॉडल का मतलब ये हो गया कि आपको किसी से पूछना नहीं, कुछ संकोच नहीं करना है। वहाँ पर कैफेटेरिया चॉइस, चूज एंड पिक टेक्निक, आप जो भी परिवार नियोजन से संबंधित उपाय अपनाना चाहें अपने आप से जा करके उसको चूज कर सकती हैं, चाहें तो सलाह ले सकती हैं, नहीं तो अपने आप से जो है सारी विधि वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। यही सुगम उपाय है उसका। दूसरा जो है, आप जिस भी टेक्निक को, हम अस्थाई और अस्थाई दोनों तरीके अपना रहे हैं, इसमें सबसे बढ़ चढ़कर जो है चाहे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, IUCD हो गया, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गया, अंतरा हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल स्वयं उनके द्वारा बिना किसी सलाह, बिना किसी से सलाह लिए हुए, संकोच किए हुए उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ हमारी दो अस्थाई टेक्निक हैं जिसमें महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
1: जी, अभी आपने बताया ये जो अंतरा है, छाया है और कुछ ऐसी गोलियां हैं, इनको लेके भी महिलाओं में भ्रम है, तो क्या इनके प्रयोग से, इसके सेवन से कोई दुष्प्रभाव भी होता है क्या?
0: ऐसा तो अभी तक कुछ देखने में नहीं आया है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ भ्रांतियां व्याप्त हैं, लेकिन उसका कारण अलग हो सकता है। इसीलिए लगभग हर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिला चिकित्सक, चाहे वो MBBS डॉक्टर्स हों या जो है आयुष की हों, लगभग कोशिश की गई है कि कोई न कोई महिला चिकित्सक वहाँ पे उपलब्ध हो जो इस बारे में, इस भ्रम को दूर करने के लिए, साथ साथ उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। बाकी हमारे सेकेंडरी सेंटर्स, टर्शरी सेंटर्स पे महिला चिकित्सक गायनी ऑप्स की उपलब्ध हैं, वो कोई भी जरूरत पड़ने पर उनको सहायता करेंगी। यद्यपि इस तरह का कभी भी सामने नहीं आया है कि कोई इससे कोई दिक्कत होती हो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने।
1: जी, इसके साथ ही जहाँ हम अस्थायी परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, तो मल्टी लोड है, कॉपर्टी है, जो महिलाएं इसका उपचार लेती हैं दो बच्चों के बीच में ब्रेक करने के लिए, तो इसका भी कोई साइड इफेक्ट?
0: नहीं, इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। अगर इस तरह से कुछ अनुभव होता है या आकर के कभी कभी बहुत 1-2% केसेस में उनको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं, तो उसका उपयोग बंद करके दूसरे तरह के जो है डिवाइस पे उनको टर्न कर दिया जाता है। बाकी 99.9% सुरक्षित है।
1: जी, कहने का तात्पर्य यह है कि ये बेशक एक कृत्रिम उपकरण है मगर शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है,
0: जी।
1: और यदि किसी बहन को किसी तरह की परेशानी आती है तो वो 1-2 महीने के बाद लगातार समस्या देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर के पास जा करके अपनी शिकायत बताएं और यदि डॉक्टर को लगता है तो वो उसे हटा करके कोई दूसरा
0: दूसरी कोई
1: सलाह
0: विकल्प दे
1: देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात रही और हमारी चर्चा जो थी वो विशेषकर महिलाओं के लिए थी। अब हम बात करते हैं अस्थाई नसबंदी, और इसमें महिलाएं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जाती हैं, पर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष इसमें बहुत हिचकिचाते हैं या उनको ऐसा भ्रम है कि हमारा वैवाहिक जीवन किसी प्रकार से अच्छा नहीं होगा, या जिस भी तरह के भ्रम है आपके जहन में भी चल रहा होगा, तो ऐसे पुरुषों के लिए आप क्या कहेंगे कि नसबंदी के लिए उन्हें किस प्रकार से आप प्रेरित करेंगे? और हमने सुना है कि उनको कुछ प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाती है।
0: जी सही है, महिला नसबंदी ज़्यादा पुरुषों की तुलना में हो रही है। महिलाओं को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में 2,000 रुपये और पुरुष नसबंदी पर 3,000 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। पुरुष नसबंदी बहुत ही आसान तरीका है, महिला में तो थोड़ा खोलना भी पड़ता है, चीरा भी लगता है, लेकिन ये NSV टेक्निक जो है, नॉन स्काल्पल वासेक्टामी जो टेक्निक है, इसमें बिल्कुल बिना चीरा बिना टांके के ऑपरेशन होता है और तुरंत छोड़ दिया जाता है घर जाने के लिए।
1: पुरुषों को
0: जी। पुरुषों की सबसे बढ़िया ये है कि उसमें बिल्कुल रुकना नहीं, ना दोबारा उनको लौट के अस्पताल जाना है, ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी है। वो अगर कोई भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो तुरंत उसको हमारे सर्जन हर CSC पर लगभग उपलब्ध हैं और कहने पर वो जा करके शिविर लगा के उनका ऑपरेशन करते हैं। ये अस्थायी विधि है और इससे कोई दिक्कत नहीं होती पुरुषों को।
1: जी जी जी, बड़ी अच्छी अभी हम लोगों ने चर्चा की पुरुषों के बारे में, और पुरुष इसमें जरूर आगे आएंगे। हमने बात देखिए सुगम डिस्प्ले मॉडल की करी, इसी समय एक और चीज है बास्केट ऑफ चॉइस, तो महिलाओं के लिए ये बास्केट ऑफ चॉइस, इस पर भी एक छोटी जानकारी।
0: मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये इस समय परिवार नियोजन के लिए जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसमें हम लोग कैफेटेरिया चॉइस रखते हैं। आप जाइए, आपको जो भी विधि अपनानी हो उसमें से चूज एंड पिक टेक्निक है, आप उठाइए उसका प्रयोग करिए। कभी कभी ऐसा होता है 1-8% किसी को किसी से परेशानी हो रही तो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते।
1: जी जी, अब हम बात करते हैं नवविवाहित जोड़ों को, क्योंकि सोनभद्र मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आता है। इसमें नवविवाहित जोड़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी मैम, इसमें आपने सुना होगा टारगेट कपल्स जो हैं, जो नवविवाहित जोड़े हैं, उनको टारगेट करके ही परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसमें हमारे सारे जो है स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग की आशाएं, ANM, हेल्थ विजिटर्स, सब लोग लगे हुए हैं। प्रयास यही है कि उनको ये बताया जाए 2 बच्चों के बीच में क्या अंतर रखना है, पहला बच्चा कब होना है, ये बताने को, यही हमारा सुगम तरीका है।
1: जी जी जी, मतलब शुरू में ही ये एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से गर्भधारण करना है और कितने बच्चे पैदा करना है, इस पर उनका विचार निश्चित किया जाएगा। चलते चलते हमारे सोनभद्र वासियों को परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है? कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे तमाम बढ़ती हुई समस्याओं की जड़ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या कहें या जनसंख्या विस्फोट कहें जी। अब समय आ गया है कि हम लोग इस पे सतर्क हो जाएं, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जगह, जमीन, संसाधन जब कम होंगे तो निश्चित रूप से रोजगार कम होंगे, बीमारियां बढ़ सकती हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो हम सब चीज़ों का अगर दोहन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास रहने, चलने, उठने, बैठने, खाने पीने के लिए सबके लिए समस्या खड़ी होगी। अभी से सतर्क हो जाएं और हम लोग अभी से ही इसका अनुपालन करना अगर सुनिश्चित करें तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, उज्जवल होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत पुरानी लाइन है कि हम दो हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे। इसी संकल्प शुभकामना के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमने जनपद, हमारे जनपद वासियों के साथ साझा की, तो धन्यवाद
0: सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुसर जी।
2: हाँ भैया, देखिए कितना बढ़िया जानकारी हम लोगों के सीमित परिवार स्वस्थ समाज के बारे में। डॉक्टर रमेश कुमार मिश्र जो उनके जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र से रहन,
3: बिल्कुल
2: सभी बहन के माध्यम से पूर्ण जानकारी मिलल और हम तक आपके भैया धन्यवाद के देवल जाए इनके, और धन्यवाद के अगर माध्यम से दिवावत हुआ भैया बतावा।
3: तो भैया श्याम देव और उनकर संगतिया भैया एक दादरा के साथ मन मनसान कराते हुए धन्यवाद देवल चाहता हूँ भैया।
2: एकदम सुनल जाए भैया।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: भला भैया।
2: हाँ भैया,
1: देखिए कितना बढ़िया संदेश सुन ली हम लोग जा, और संदेश के बाद भैया देखा हम लोगन जो अनबा की बातचीत फिर आगे बढ़ाओ जाए। और बात हम लोगन के भैया देखा छोटा परिवार के होत रहा, और छोटा परिवार रहे से भैया देखा हर लोगन के संतुलित भोजन भी मिलेला। और संतुलित भोजन तभी संभव हुए जब हम लोगन के अपन खेती बारी सही रही। और खास तौर से भैया देखा जोन बाकी दलहन के बात होकेला, तो निश्चित रूप से भैया देखा अपने जोन फसल के रकबा बा ओकरा में दलहन के भी रकबा बढ़ा करके भैया देखा हम लोग संतुलित भोजन के प्रबंध कर सकेला भी।
2: बिल्कुल भैया, अगर दलहन उत्पादन के बात हम लोग कर लिए तो दलहनी फसल मृदा स्वास्थ्य के खातिर और मानव पौष्टिकता खातिर दोनों खातिर एक वरदान है।
1: बिल्कुल,
2: भारत जोन बाकी कृषि प्रधान देश है ये हो, और एमे जोन बाकी दाल केवल प्रोटीन के मुख्य स्रोत नहीं हो, बल्कि ये खेत के खोल हुआ जोन उपजाऊपन होला ओके भी जोन बाकी प्राकृतिक रूप से बनावे में ज़्यादा कारगर होला भैया।
1: बिल्कुल,
2: और समझ चल जाए कि अगर एक हम लोग मृदा स्वास्थ्य के बात कर जाए कि माटी की कैसे जोन बाकी स्वास्थ्य वर्धक बना होला, तो समझ चल जाए कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कराला।
1: अच्छा अच्छा।
2: अब नाइट्रोजन की बात हो कि दलहनी पौधन में जो दाल वाला पौधा हो जितना भी ये सब में समझ जाए कि राइजोबियम पावल जाला अगर जड़ में।
1: अच्छा अच्छा।
2: और राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होला भैया, एकर काम हो कि हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन हो ओकरा सोख करके माटी में मिला देला।
1: अच्छा अच्छा।
2: और माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ावे में जो बाकी अपन प्राकृतिक रूप से सहयोग करला भैया। और रासायनिक खाद के खातिर ये कम जरूरत दे वाला, मतलब जहाँ जौना में दाल बोआ गई दलहनी फसल ओमे जौन बाकी फिर से अगर दूसर फसल आप बोई हैं तो ओके खातिर जौन बाकी रासायनिक दवा और खाद डाले की कम जरूरत पड़ला।
1: बिल्कुल,
2: काहे से कि ये नाइट्रोजन खुदे खींच के जमीन में सोखले हो, तो फिर नाइट्रोजन के तत्व हमें जरूरत नहीं पड़े भैया।
1: बिल्कुल, और ओकरे साथ साथ भैया जोन बाकी खेत के लिए तो भैया देखा जोन बाकी अमृत ये हुए, लेकिन हम लोगन के जोन स्वास्थ्य बा ओकरा खातिर भी भैया जोन बाकी अमृत हुए।
2: हाँ।
1: और कहल जाला भैया की जोन दाल हुए ओकरा में भरपूर मात्रा में भैया देखा प्रोटीन पावल जाला।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ओकरा में प्रोटीन की क्षमता भैया देखा 20% से लेके 45% तक पावल जाला, जोन शरीर के विकास में भैया देखा काफी मदद करेला। और ओकरे साथ साथ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व तो आयरन जिंक पोटास और फोलेट विटामिन B9 पावल जाला, जोन एनीमिया खून की कमी रोके में खून के कमी दूर करे में मदद करेला।
2: बिल्कुल, और जोन मोटापा जोन हो रहा हन भैया ओके भी जोन बाकी रोके में काम ज्यादा करेला है जोन बाकी।
1: बिल्कुल एकदम सही।
2: दाल में जोन बाकी वसा नाम के चीज बहुत कम हो।
1: हाँ।
2: और जोन बाकी एक बहुत ज़्यादा जोना में डाइटरी फाइबर होला, और ये पाचन तंत्र के दुरुस्त करे खातिर जोन बाकी वजन नियंत्रित करे में भी मदद करला भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम जोन बाकी हम लोगन के बातचीत फिर आगे चली, लेकिन हम तो कहब कि भैया देखा यही से जुड़ल भेंट वार्ता क्रम हुए। कुल्थी की खेती फायदेमंद खेती एक बारे में असरफी लाल सिंह गोड़ भैया जोन की आज यहाँ जुटल हुए अपन अचलू भैया से बातचीत करिए और हम लोग सुनल जाए भैया।
2: बिल्कुल भैया, इतना औषधि गुड़ से भरपूर जौन कुल्थी होला ओकर दाल जौन बाकी का ओकर उपयोगिता है एक सुन लो भैया।
1: एकदम सुनल जाए।
3: और पोषण और स्वास्थ्य के दृष्टि से जौन बा कई तरीके के दलहन फसल हो चाहे अगेती फसल हो आय के दृष्टि से एक बारे में भी सोचल जाला हमन। तो देखा कुल्थी एगो पौष्टिक दलहन फसल हुए जेकर दाना जनबा प्रोटीन फाइबर और कई तरीके का जरूरी पोषक तत्व से भरपूर होला, इससे ई जनबा संतुलित आहार में उपयोगी हो सकेला। तो कुल्थी का नियमित आहार में शामिल कैला से शरीर के जरूरी पोषण मिले में मदद मिल सकेला, और ग्रामीण परिवारन खातिर ई एगो उपयोगी खाद्य विकल्प भी बा। तो यह कुल्थी का फसल कैसे करे के चाहिए, खेत का तैयारी कैसे करे के चाहिए, यही सब विषय पर आज चर्चा खातिर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद बड़न असरफी लाल सिंह गौड़ भैया जे कि दुद्धी ब्लॉक के केवाल गांव से आयल हुए। तो असरफी भैया आपके आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत बा भैया।
4: स्वागत बा।
3: भैया देखा इतना बढ़िया माहौल बा खेती किसानी के वजह तो उपयुक्त माहौल कहल जा सकेला कि भैया देखा बरखा बुनी तो बहुत बढ़िया भइल, लेकिन कहल जाला कि कई जगह अपने जनपद में ही बहुत जगह बरखा बुनी न भइल, जिसे पुरान जोन खेती बा अपन तो किसान भैया लोग के ना संभाल पैलन, तो ऐसने में अपने किसान भैया लोग जोन बा कुल्थी के फसल के ओर जोन बा अपन कदम बढ़ावत हुअन। पहले तो ये बताओ ये कितना उपयुक्त कदम बा, पहले
4: ये कदम बहुत अच्छा बा भैया। जैसे

0: दुधि या सोनभद्र में वर्षा की कमी के वजह से खेती ना हो पायलक या खेती करते करते पछड़ गए बा, उ खेत के उपयोग अभी हम कुल्थी बो करके कर सकीला।
1: तो एक बदे जन बा खेती जन तैयारी करल जाला असर पे भी है, तो का तैयारी कब से शुरू करे के चाहिए किसान भैया?
0: अब जैसे बरसात धान रोपनी के बाद, इसके बाद खेत को पहले जोताई कर दीजिए। करने के बाद होता क्या है कि उसमें घास आ जाएंगे अंदर से, जो पिछली घास तो है बरसात की, लेकिन अगले घास, फिर एक बार उसकी जोताई, एक बार दो बार, तीसरे बार में उसको फिर जुताई करके और उसमें बो करके एक बार फिर हम लोग जुताई कर देते हैं, जिससे खर पतवार की मात्रा कम हो जाती है।
1: अच्छा अच्छा जी, तो इस तरीके से अगर देखल जाए कि भाई ओके खेत के तैयारी में बहुत ज्यादा मेहनत का काम ना है। अच्छा, ऐसने में अगर मिट्टी का जन उपयुक्त कहल जाला कि मिट्टी के कब उपयुक्त समझल जाए कि हमारे कुल्थी के फसल खातिर उपयुक्त मिट्टी बाय समय?
0: मिट्टी के उपयुक्त के बात ही बात कि उस समय भुरभुरी हो चाहिए, और अक्सर हम लोग का जो प्लाट है बलुआ टाइप का है
1: अपने दुधी क्षेत्र
0: जी, तो वहाँ कुर्थी के लिए बड़ा उपयुक्त मिट्टी है।
1: अच्छा अच्छा,
0: बरसात भी अगर होए तो कोई विशेष असर नहीं कर पाता, क्योंकि पानी वो मतलब बह जाला या तो अंदर सूख जाए, जिससे कुर्थी को उतना नुकसान नहीं करे।
1: तो ऐसे में जैसे कहा जाला कि गोबर के खाद या कंपोस्ट खाद ये बहुत जरूरी मानल जाला, तो का एहू खातिर जो गोबर और कंपोस्ट जरूरी बा?
0: जी, आप उसमें अगर है व्यवस्था, तो अगर बिल्कुल उसर टाइप का खेत है या पथरीली है, तो उसमें हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सके। उसमें कोई
1: तो जाहिर सी बात हुआ, अपने जैसे अपने सोनभद्र का जन भौगोलिक स्थिति बा असमान बा, मारकुंडी के ऊपर जन बा खेती अलग तरीके से होला, मारकुंडी के नीचे खेती अलग तरीके से होला, तो ऐसे में जन पथरीली जमीन के बात आप कहलन, तो हमें जन बा कंपोस्ट या गोबर खाद का उपयोगिता बढ़ जाले
0: बढ़ जाला।
1: तो बिल्कुल सही कहलन सर भैया। एक चीज जैसे जानल चाहब कि जैसे माटी उपयुक्त नहनी तो माटी की जांच जरूरी हुई, या बीज के चुनाव कैसे करे चाहिए, एक के बारे में बतावे थे।
0: बीज के चुनाव देखे, हम लोग तो बीज अपने घर के रखे है, उसमें एक दो किस्म की बीज है।
1: कौन कौन?
0: एक उसका तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक हम लोग उसको कहते हैं माघड़ा, जो पीछे माघ के महीने में होता है।
1: अच्छा।
0: और एक अभी ये अघानी है, तो अभी महीने के मुताबिक, तो हम लोग उसी बीज को अघानी को बोते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि वो माघड़ा वाला पिछड़ जाती है, जिससे जैसे गेहूं का खेती नहीं हो पाती है उस खेत में। तो अभी जो हम लोग ये जो अपने जो कुर्थी है, इसको अगर हम बोते हैं, तो उसमें गेहूं की खेती हम लोग मतलब ये लास्ट नवंबर तक ये पक जाए।
1: अच्छा
0: जी, किसी भी हालत में लास्ट नवंबर तक कटेगा, हम बो सकते हैं दिसंबर के पहले सप्ताह तक गेहूं बुआई हो सकती
1: है। तो एकरे बदे मतलब ये कि मतलब तुरंत फिर हमारे आगे का जन फसल है ओकर
0: हां ओके पकड़ ले।
1: बिल्कुल सही कहत हूं। तो इसने में देखा सरफी भैया कि बुआई का जन समय होला वो कैसे तय करल जा सकेला?
0: बुआई के तय करे के यह बात तरीका कि बरसात मौसम साफ रहे, खेत तैयार कल गेल बा, और ओके हम लोग अपन मौसम देख करके मौसम साफ में बुआई कर दे।
1: कितना गहरा पे बोए चाहिए?
0: 3-4 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं।
1: अब दूरी कितना रहे चाहिए?
0: दूरी तो छिटकाऊंगा,
1: छिटकाऊना बात तो हमें तो दूरी का मतलब
0: हाँ, दूरी के मतलब नहीं बात।
1: ठीक है। तो एमएन देखा जैसे होला कि व्यवस्था सिंचाई की व्यवस्था की बात होले, तो जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत न पड़े ला, लेकिन तब वो जो थोड़ा वो जो सिंचाई की जरूरत पड़े तो कैसे करें किसान भैया लोग?
0: अगर उसमें देखे पानी तो ऐसे जैसे पानी स्प्रिंकलर वगैरह हो तो बहुत हल्का सिंचाई कर देना चाहिए।
1: कितना कितना दिन पे?
0: बस एकाक पानी, बस एकाक दो पानी लास्ट तक, ज्यादा नहीं देना है आपको। जैसे गेहूं की हम लोग सिंचाई करते हैं, मटर की सिंचाई करते हैं, उस तरह पानी हमको नहीं देना है उसको एकाक बार। अरे तब तक कुल्थी आपका तैयार।
1: मान लीजिए अगर खरपतवार है तो उसका नियंत्रण कैसे करते होंगे फिर?
0: तो उसमें से हाथ से हम लोग निकलवा देते हैं,
1: मजदूरी करा के,
0: घर के बाल बच्चे परिवार लग करके उसको सर सफाई करा देते हैं।
1: अच्छा, बीच में ये तुम्हारे शुरुआती में आप बता दिलन कि गोबर खाद या कंपोस्ट खाद की मदद से मन खेत का तैयारी कर जा सकेला पहले ही, तो का बाद में भी जैसे मन जरूरत अगर पड़े तो कोनो खाद डाल जा सकेला बाद में?
0: नहीं, बाद में कोई जरूरत नहीं बा, कुल्थी के लिए विशेष खाद की जरूरत नहीं बा।
1: अच्छा, मान लो कभी कभार रोग कीट लगे जैसे कि कहल जाला कि फसल में जनबा

0: एकरे बारे में बताएं कुछ।
1: हाँ, हम ये कहे चाहब कि पोषण के भी जरूरी बा, कुल्थी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बा, तो ये हर किसान भाई पैदा करें और मार्केट में जाएं, अन्य भाई भी इसका फायदा लें। और दूसरी बात बा कि जैसे हम खेती करते हैं, हमारे पछड़ गए खेत नहीं, धान के रोपाई होने पाए, टाइम से मक्का की नहीं हो पाई, उस खेत में हम बीच में जो अगले खेती करने के लिए जो गेहूं की खेती करें ओकर लिए हम बीच का जो समय बचता है हमें कुल्थी पैदा ले, तो आय के भी अच्छा स्रोत हो जाए।
0: मतलब जो आर्थिक संकट
1: आयल उसे हम निपट ले
0: निपट लिया जाए। हाँ। तो इस तरह आपके आय की दृष्टि से और पोषण की दृष्टि से असर भी भैया किसान भैया लोगों के साथ साथ अपने गांव के लोग भी जनबा आपके सुनत हुआ
1: जी,
0: तो उनके जनबा कुल्थी फसल के उपयोग करे से का का फायदा हो सकेला, खाए के दृष्टि से मतलब पोषण की दृष्टि से ओकरे बारे में तो नहीं बताऊंगा।
1: देखें, कुल्थी के खाए से दाल, एक तो अपनी जो घर का जो दाल रोटी है उसमें खाने का एक हो गया, दूसरी फायदा स्वास्थ्य के लिए है कि जैसे पथरी वगैरह की जो समस्याएं हैं, समस्या न मैं विशेष इसको नहीं कहूंगा कि ये कुल्थी ही मतलब पथरी का दवा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको खाने से अगर इसका प्रयोग करते रहें तो शायद हमें पथरी रोग
0: हो ही
1: ना,
0: हाँ, संभावना कम से कम,
1: संभावना कम है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और आर्थिक रूप से भी कुल्थी 50-60 रुपया किलो आपका आज भी बिक जाता है मार्केट में,
0: मतलब मांग अच्छा बा,
1: मांग अच्छा बा जी।
0: तो देखें किसान भाई लोग, ग्रामीण भैया लोग, इतना अच्छा जानकारी आज असरफी भैया के साथे आज मिलल कि भैया कुल्थी रोग से पोषण की दृष्टि से देखल जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखल जाए, और किसान भैया लोग अगर एक आय के दृष्टि से भी देखें तो एकर खेती करब उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रही, बाजार में एकर मांग अच्छा बा, कुल्थी के फसल कई के जनबा, खेती कई के जनबा, ओके लाभ उठावल जा सकेला। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे खातिर असरफी भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुराव भाई।
3: हाँ भैया।
2: देखा हर तरह के पोषक तत्व से भरपूर जनबा की दाल के फसल होला,
3: बिल्कुल,
2: और लेकिन ओके साथ साथ जनबा कुल्थी की बात जो चलल और औषधि गुण से भरपूर जन पथरी होखे से बचाव वाला अगर पहले सेवन होत रहे तो जन बाकी उसे निजाकत मिलला हो एक संभावना नहीं रहे,
3: बिल्कुल।
2: और अगर क्यों के हो भी गई है तो दवा के साथ साथ जन बाकी एक भी सेवन होए कुल्थी के दाल के या तो कर भिगा करके चाहे जैसे भी, तो निश्चित रूप से एक सुधार अच्छा होके की बात कहल जाला
3: एकदम।
2: अब वैसे हम लोग के तरह तरह के विटामिन से युक्त, पोषक तत्व से युक्त, प्रोटीन से युक्त साग सब्जी भी होला, तो ओके भी हम लोग जो बाकी अपने मौसम के अनुसार अगर खाइल जाए और सेवन कर जाए तो निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ रहे भैया
3: एकदम।
2: तो आज बाजार भाव नहीं आयल होगा भैया, कहीं
3: एकदम आयल हुए भैया बाजार भाव जो बाकी हम लोगन के कार्यक्रम के एक थाती रहला। और आज रावटसन से बाजार भाव बाबूलाल मौर्या भैया भेजले हुगन।
2: अच्छा अच्छा,
3: कुंतल में हुए भैया।
2: अच्छा भैया,
3: आलू 1100 से 1200 रुपया कुंतल, प्याज 4000 से 4200, टमाटर 2500 से 2700 रुपया कुंतल, लहसुन 10000 से 12000 रुपया कुंतल, मिर्चा रहले 3500 से 4000 रुपया कुंतल, धनिया 10000 से 12000, पालक 4000 से 5000 रुपया कुंतल, मूली 4000 से 4500।
2: अच्छा,
3: परवल रहले 7000 से 8000 रुपया कुंतल, करेला 1500 से 1600, नेनुआ 1200 से 1500 रुपया कुंतल, बोड़ा 2500 से 3000, कोहड़ी रहले 1200 से 1500 रुपया कुंतल, बैगन 2200 से 2500, और लौकी 1800 से 2000 रुपया कुंतल, खीरा 2500 से 2800।
2: अच्छा,
3: और सूरन रहले 4000 से 4200 रुपया कुंतल, अदरक 7000 से 8000, और बंडा रहले 2000 से 2200 रुपया कुंतल, फूल गोभी 2000 से 2500 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2200 से 2500 रुपया सैकड़ा, नींबू रहले 500 से 600 रुपया प्रति सैकड़ा।
2: ई रहल
3: भैया रावटसगंज के बाजार भाव, और बाबूलाल मौर्या भैया भेजले रहल, और इनके भी धन्यवाद दिया जाए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना बढ़िया साग सब्जी खिया के सबके स्वस्थ रखत हम, और जो बाकी स्वस्थ के साथ साथ स्वच्छ भी रह बड़ा जरूरी हो भैया,
3: बिल्कुल,
2: तब जाकर कहीं हमन के बात बनी। खान पान तो सही सलामत रहे के चाहे, पौष्टिक आहार लेवे के चाहे, लेकिन साथ साथ जनबा की साफ सफाई अगर रहे तो निश्चित रूप से अपने शरीर के निखार भैया जौन आवला ओकर काक पुछला जवाब रहला भैया।
3: बिल्कुल सही कहते हो भोला भैया, निश्चित रूप से।

0: साफ सफाई की बात आवेला तो हम लोगन के एकर शुरुआत अपने घर से ही करे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जौन
1: बिल्कुल
0: भी घर के लोग हुआ या घर के जौन भी आसपास गंदगी हुए ओकर सफाई करके हम लोगन जौन बाकी एकर शुरुआत कर सकेला। और निश्चित रूप से भैया देखा जौन भी बीमारी आवेला या जौन भी बीमारी पनपे के संभावना रहला तो
1: बिल्कुल
0: भैया
1: बिल्कुल
0: देखा घर के आसपास के जौन कूड़ा करकट हुए नाली के पानी हुए या अन्य गंदगी हुए वही से भैया देखा जौन बाकी आवेला। तो जब हम लोगन अपने घर के आसपास भैया देखा साफ सफाई रखब अपने घर में भैया देखा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जौन बाकी
1: बिल्कुल
0: साफ
1: बिल्कुल
0: सफाई रखब लेकिन बचपन के भैया देखा हमेशा बतावत रहब कि साफ सफाई कैसे करे के चाहिए तब भैया देखा बीमारी हम लोगन से हमेशा
1: बिल्कुल
0: दूर
1: भैया,
0: रहे।
1: एक बार नखरू भैया के यहाँ पहुँच गिल जौन बाकी आसपास बड़ा घास फूस रहे हो, और हमें जौन मच्छर जौन बाकी लगन काटे, तो ये समझ में अलग कि जो है कि गंदगी के ही अगर ये है, तो फिर जौन बाकी ओकर साफ सफाई हो लग तो 2-3 दिन के बाद बताते हम कि अब मच्छर नहीं लगे भैया।
0: बिल्कुल
1: तो निश्चित रूप से साफ सफाई कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये पर जौन बाकी हम लोग के अपन घर से जो अगर शुरुआत कर जाए तो गली मोहल्ला सब साफ रही। अगर
0: बिल्कुल
1: आपो अपन घर के आसपास साफ रखें, हमहूँ अपन घर के आसपास साफ रखें, तो ये तरीके से पूरा गांव के पूरा घर के आसपास साफ सफाई रही।
0: एकदम
1: वहीं अगर सड़क हो भैया, ओहो के आसपास साफ सफाई रही, और नहीं तो इनमें कहीं तरह तरह के जौन बाकी कच्छ मच्छ बिच्छी सांप वगैरह निकलिए हैं, तो हम ही लोग के लड़का बच्चों के नुकसान हो भैया।
0: बिल्कुल सही कहते हुआ भला भैया। और गाड़ी की सुई भी धीरे धीरे इशारा करते हुए कि आज के पंचायती हम लोगन यही समेटल जाए
1: फिर
0: और फिर भैया देखा जोन बाकी नया जानकारी के साथ
1: अगले
0: उपस्थित
1: दिन
0: होइए
1: मुलाकात हुई
0: तो का कहते हुआ।
1: तो चल जाए भैया, तो सब पंचन के
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम।
0: भैया।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, जो अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: पंचो जय
1: जय हिंद।
0: हिंद। अभिषेक भैया,
1: हाँ पुनीता बहनी।
0: भैया खेती के माध्यम से नहीं अपन पंचन केर आय बढ़े और माटी के उर्वरता भी बनी रहे और खेती पर्यावरण के अनुकूल हुए, इके उद्देश्य से नहीं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के यहाँ बढ़ावा दिन जा रहा है।
1: बिल्कुल बहनी। और अपन खेती पाती तो प्रकृति पर आधारित होते।
0: अबे 20-25 साल पीछे चले जाओ तब हूँ यहाँ होत रहा है कि खतवार में यहाँ एक फसल लीन जात रहे तो के खतवा खाली छोड़ दिन जात रहे। अब का है, हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, हमारे जोत जोन है वह कम हो गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फसलें हम पंच लिए थे, इसी खातिर माटी का स्वास्थ्य हमारा खराब हो रहा है।
1: बिल्कुल बहनी। तो अब सरकार ये जोर दे रही कि लोग रसायन पर ना ध्यान के प्राकृतिक खेती पर लौटें। यह बदियों राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन लेके आई है।
0: और अभिषेक भैया, अपनी खेती पाती में यहाँ तमाम तरह के चीजें के हमका सबका आवश्यकता होते, चाहे वो बीज संबंधी हो, चाहे खाद संबंधी हो और चाहे कोनो कृषि यंत्र संबंधी। ई कामन के खातिर हमार सरकार हमका सबका कैसे मदद करत है तो सुन लीन जाए, यही बारे में है आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को अब 6% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को खेती बाड़ी और कृषि मशीनरी से जुड़े कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत पात्र किसानों को 6 लाख रुपए तक का ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर देने की व्यवस्था है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में करीब 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाना है। योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराना और उन्हें कृषि गतिविधियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को अब पहले की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।
0: अभिषेक भैया,
1: हाँ बहनी।
0: भैया जहाँ हम पंच खेती पाती करे थे, बाग बागवानी करे थे
1: हाँ।
0: और उसके साथ साथ तमाम अन्य प्रकार के व्यवसाय भी करे थे, उमा से एक है प्रमुख मत्स्य पालन। तो पुनर्चक्रिय मत्स्य पालन कैसे की जाए, इसके बारे में हम बता रहे हैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ मत्स्य पालन से आप जुड़े हैं या मत्स्य पालन शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन है क्या?
4: सभी किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। जहाँ तक पुनर्चक्रीय जल कृषि की बात है तो ये मछलियों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली है। इसमें पानी का निरंतर इस्तेमाल होता है, कहने का मतलब वही पानी बारंबार उपयोग होता है।
3: तो इसमें कुछ खास प्रजातियों का चुनाव होता होगा?
4: हाँ, इसमें विशेष प्रजातियों का चुनाव किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पंगास मछली आजकल उत्तर प्रदेश में काफी चल रही है, तो ये काफी सहसूर्ण है इस प्रकार के मत्स्य पालन के लिए। उसके अलावा तिलेपिया मछली लाभकारी है, कॉमन कार्प मछली है, तरुण कार्प मछली है, रोहू भाकुर जो है 200-300 ग्राम के वजन तक का इनका पालन किया जा सकता है। रंगीन मछलियां जो है उनका भी पालन इस पद्धति में किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एक बेनामी झींगा है उसका भी पालन किया जा सकता है।
3: तो आखिर ये शुरुआत क्यों करें किसान भाई बहन पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन? डॉक्टर साहब,
4: किसान भाई बहन इस पद्धति का उपयोग इसलिए करें क्योंकि आज जो परिवारों का विघटन हो रहा है और भूमि और जल का जो उपलब्धता है वो कम हो रही है जनसंख्या विस्फोटन की वजह से, ऐसी दिशा में सभी को भूमिगत तालाब उपलब्ध होना बहुत ही उपयोगी नहीं हो रहा। इस दिशा में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कम जमीन और कम पानी में अधिक से अधिक उच्च उत्पादन लेने की पद्धति से पुनर्चक्रीय जल कृषि करके उच्च उत्पादन लिया जा सकता है।
3: और ऐसा तालाब में संभव नहीं है?
4: ऐसा तालाब में संभव नहीं है और जलवायुगत परिवर्तन के मद्देनजर आज जिसकी चर्चा की जा रही है बहुत ही उपयोगी है। ये कहीं भी किसी भी तरह की जमीन में, मिसाल के तौर पर ऊसर वाली जमीन में, बंजर जमीन में, यहाँ तक रेतीली जो जमीन है, बलुई मिट्टी वाली जमीन है जो बेकार पड़ी है, वहाँ पर उपयोग करना होता केवल भूमिगत जल जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए।
3: तो इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना तैयार करनी होगी।
4: इसके लिए आधारभूत संरचना के लिए सर्वप्रथम हमें एक टैंक बनाना चाहिए जिसमें मछली पालन करना चाहिए। के अलावा हमें वाटर पंप रखने होंगे 3 से 5 हॉर्स पावर के चाहिए जिसकी क्षमता 1 से 2 लीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ड्रम फिल्टर लगाते हैं, ये ड्रम फिल्टर में एक तरह के 40 से 100 माइक्रॉन की छन्नी होती है जिससे पानी छन के जाए, जो भी बेकार चीजें हों उससे छन जाए। उसके अलावा रासायनिक फिल्टर का भी उपयोग किया जाता है जिसमें जियोलाइट का उपयोग किया जाता है, जो विषाक्त गैस होती है उसको शुद्धिकरण किया जा सके। इसके अलावा जैविक फिल्टर होता है जिसमें, क्योंकि इसमें कृत्रिम आहार देने होते हैं तो उससे अमोनिया का निर्माण होता है, उसको फिल्टर करने के लिए बैक्टीरिया जो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया होता है उसकी उपयोगिता होती है, जो विखंडन करता है अमीनो एसिड को और नाइट्रेट में बदलता है विभिन्न प्रोसेस के द्वारा, तो इसके लिए जैव फिल्टर की आवश्यकता होती है। सर्दियों में ये प्रभावित हो जाता है तो इसे बीच बीच में सफा कर लेना चाहिए। उसके अलावा डी गैसिंग चैम्बर भी होते हैं, यूवी स्टरलाइजेशन भी कहीं कहीं लगाए जाते हैं जिससे किसी प्रकार के रोगाणुओं का विनाश किया जा सके। इस व्यवस्था के साथ नर्सरी सिस्टम भी रखना चाहिए, बच्चे जो छोटे आकार के होते हैं उनको लाकर उसमें पालन करना चाहिए और जब 20-25 ग्राम के हो जाएं तो उसको इस पुनःचक्रीय जल कृषि पद्धत वाले टैंक में उपयोग करना चाहिए जिससे उत्पादकता अच्छी मिल सके।
3: तो जो किसान भाई बहन शुरू करना चाहते हैं पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन, तो कितने से शुरुआत करें, कितने क्षेत्रफल से तो अच्छा रहेगा?
4: इसमें जैसे विभिन्न प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकार के ये टैंकों के निर्माण के लिए सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे 50 लाख के लिए 8 टैंक के द्वारा है, उसके अलावा 10 लाख के लिए भी हैं 6 टैंक के हैं, और उसके अलावा आपका 25 लाख का भी है।
3: अलग अलग परियोजनाएं,
4: अलग अलग परियोजनाएं, यहाँ तक एक टैंक जो रंगीन मछलियों का करना होता तो 50,000 रुपए का एक छोटा सा कर सकता है टैंक लेकर, 1 घन मीटर में भी कर सकता है और इसमें उत्पादन ले सकता है।
3: तो डॉक्टर साहब, ये जो पुनर्चक्रीय पद्धति है री सर्कुलेटरी सिस्टम से मत्स्य पालन, तो इसके फायदे क्या क्या हैं?
4: इसके मुख्य फायदे में देखा जाए तो पानी की जो जरूरत होती है कम होती है, क्योंकि पुनर्चक्रण होता रहता है, वही पानी बारंबार उपयोग में लाया जाता है, तो ये काफी लाभकारी है। उसके अलावा उच्च संचय दर, इसमें मछलियों का संचय अधिक मात्रा में किया जा सकता है, साथ साथ स्थल चयन में लचीलापन होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया किसी भी भूमि में इसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा जैव सुरक्षा के मद्देनजर जैसे कोई रोग व्याज होता है मछलियों में उनके उन्मूलन के लिए ये पूर्ण तरह से नियंत्रित व्यवस्था होती है तो आसानी से इसमें किया जा सकता है, और कम से कम इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन सघनता के माध्यम से लिया जा सकता है।
3: लेकिन इसमें आहार व्यवस्था कैसे देनी होती है?
4: इस पद्धति का जो प्रमुख घटक अगर क्रियान्वयन के रूप में देखें तो आहार ही के द्वारा इसमें सभी उत्पादन लिया जा सकता है। वही आहार जो आजकल बाजारों में जलप्लावित आहार है जो मिलता है 25 से 30% उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, उसका उपयोग किया जाता है, और मछलियों में जो अगर 1.5 किलो आहार आप देते हैं तो 1 किलो मछली पैदा हो जाती है, उससे आहार भी नष्ट नहीं होता है और नीचे जो बचा हुआ खाना होता है या मल इत्यादि होता है उसकी भी सफाई एक तो फिल्टर करता है, एक साइफन करके किसान भाइयों को चाहिए कि स्वतः उसको उन्मूलन कर लें जिससे आपके फिल्टर पर ज्यादा दबाव ना पड़े।
3: क्या प्राकृतिक भोजन भी पुनर्चक्रीय पद्धति में दिया जा सकता है?
4: प्राकृतिक भोजन की उतनी महत्ता नहीं है जितनी की कृत्रिम आहार जो हमने बताया जलप्लावित आहार उसकी है, तो इसमें पूर्णतः कृत्रिम आहार आधारित प्रणाली है।
3: डॉक्टर साहब, इसमें उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में कितना तक मिल सकता है और मुनाफा क्या होगा?
4: इसमें 100 से लेकर 150 टन तक उत्पादन आधा एकड़ के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के तालाबों से लिया गया है, विशेषकर पंगास मछली में जिनकी बाजारू जो माप रही है वो 400 से 600 ग्राम रही है, और कुछ लोग इससे ज्यादा भी दुगुना तिगुना भी उत्पादन ले रहे हैं, उनको काफी लाभ हो रहा है।
3: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
4: मेरा मोबाइल नंबर 9838077630 9838077630 9838077630।
3: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं मत्स्य पालक भाइयों बहनों का डॉक्टर?
4: किसान भाई जिन्होंने ये पद्धति का उपयोग राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से लगाया हुआ है, अगर उन्हें कठिनाई भी आती है तो अपना साहस न छोड़ें और निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी।
3: डॉक्टर शरद कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पुनर्चक्रीय पद्धति से मत्स्य पालन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहे?
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब?
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
6: पर हम तो सभी डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच है?
5: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: प्रीता बहनी, कितना बढ़िया मौसम चल रहा है, और बेमौसम न कह के कहा जाए मौसम, बताना पानी झमाझम बरस रहा है आजकल। तो भैया संझा बेडिया, जब सत्तारी सबको है तो कुछ गीत गौ नहीं लोक गीत हुई जाए तो एकदम मजा आ जाए। तो बहनी देखो, हम पंचनबद्ध एक बढ़िया नकटा लोक गीत लेके आए हैं, सुनाए रही आमनी पांडे बहनी, तो सुना जाए और मौज लीन जाए।

0: अभिषेक भैया, हम पंच बात करें बाग बागवानी के,
1: हाँ
0: खेती
1: भाई।
0: के, उसके साथ साथ मत्स्य पालन के, और भैया अब बारी है तरकारी के। तो
1: हाँ
0: फूल गोभी और पत्ता गोभी उत्पादन कैसे किन जाए, इसके बारे में हम बता रहे हैं आज के किसान बाबूलाल मौर्य भैया।
1: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सोनभद्र जनपद के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर गांव।

0: जहां के प्रगतिशील किसान बाबूलाल मौर्य भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। बाबूलाल मौर्य भैया नमस्कार।
1: नमस्कार साहब।
0: बाबूलाल भैया ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहां तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
1: डॉक्टर साहब मेरी पढ़ाई लिखाई जो है इंटरमीडिएट रखी हुई है, साइंस साइड मेरा था गणित विषय से, और इसके बाद मैंने ओबरा से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, अपने खेती बाड़ी में लग गया।
0: कितनी साल पुरानी बात है
1: ये सर? हम लगभग 92 में ओबरा में पढ़ रहे थे।
0: यानी लगभग 34 साल?
1: जी सर।
0: तो 34 साल से खेती से जुड़ गए आप? फिर
1: खेती से, देखिए हम लोगों का पैतृक व्यवसाय ही खेती था तो खेती से तो जन्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से खेती करने के लिए हम 2007 से जुड़े हुए हैं।
0: अच्छा, लगभग 19 साल?
1: जी, ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं 2007 से।
0: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
1: हमारे सर घर का जो जमीन है 5 एकड़ है, लेकिन और बटाई का लेकर के हम 13 एकड़ में काम करते हैं।
0: यानी लीज पर लेकर के कुल 13 एकड़ पर आप वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं?
1: जी।
0: इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
1: डॉक्टर साहब मिर्च है, नेनुआ है, मूली, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और पाली हाउस लगा है उसमें खीरा है, और जो है करेला है, ये सब चीजें हैं।
0: यानी सब्जियों की विविधता आपके पास है?
1: डॉक्टर साहब मेन है ना कि जैसे फूल गोभी हमारे यहाँ 12 महीने होती है, 365 दिन पूरे गर्मी बरसात जाड़ा।
0: तो कोई खास वैरायटी लगाते हैं?
1: जी जी, इसकी अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कि गर्मी के लिए अलग वैरायटी है, जाड़ा के लिए अलग वैरायटी है, बरसात के लिए अलग वैरायटी है।
0: आप कौन सी वैरायटी लगाए हैं?
1: इस समय सर जो हम नर्सरी डाले हैं वो रोहन नाम से है।
0: और गर्मी में कौन सी करते हैं?
1: गर्मी में हैप्पी के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर।
0: तो ये बताएं कि फूल गोभी और पत्ता गोभी का रकबा है कितना आपका?
1: जैसे हम कुल मिला के 6 बीघा में करते हैं, यानी हो गया 4 एकड़ में, तो 4 एकड़ में जो हमारी सब्जी होती है तो फूल गोभी 12 महीने, तो एक ही खेत से हम फूल गोभी 3 से 4 बार ले लेते हैं किसी किसी खेत में।
0: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं आप?
1: जी जी बिल्कुल। तो कुल मिला के यदि फूल गोभी का ले लिया जाए तो लगभग 6-7 एकड़ हो जाएगा पूरे वर्ष में।
0: तो इस समय रकबा आपका फूल गोभी और पत्ता गोभी का 4 एकड़ है?
1: नहीं, इस समय जैसे हमारा 1 एकड़ लगा हुआ है, फिर जैसे 15-15 दिन पर हमेशा हमारे यहाँ लगता रहता है
0: जी।
1: तो जो 3 महीने बाद खेत खाली होगा फिर गोभी लग जाएगा उसमें, इस तरह से हमेशा चलता रहता है उसका चक्र।
0: तो फूल गोभी की नर्सरी खुद तैयार करते होंगे?
1: जी बिल्कुल, हमेशा तैयार अपने घर से तैयार करते हैं, हमेशा 10 दिन 8 दिन पर नर्सरी पड़ती रहती है, 10 दिन पर लगता रहता है, अपने यहाँ नर्सरी तैयार करके अपने यहाँ से लगाते हैं अपने बीज डाल करके।
0: तो पाली हाउस में आप नर्सरी डालते होंगे?
1: जी, पाली हाउस में नर्सरी तैयार करते हैं और बाहर लगाते हैं ओपन में।
0: क्या पोट्रे में?
1: प्रोट्रे में भी डालते हैं और सीधे खेत में भी पाली हाउस में डालते हैं।
0: पत्ता गोभी का भी आपने नाम लिया, तो इसकी कौन कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप?
1: पत्ता गोभी डॉक्टर साहब देखिए एक 22 नंबर आता है, 22 नंबर बड़ी ही अच्छी वैरायटी होती है, वो 1 से 5 किलो तक होता है, बल्कि छोड़ देंगे तो 7-8 किलो हो जाता है, तो वो वैरायटी हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद एक और वैरायटी सम्राट नाम से आती है तो उसको भी लगाते रहते हैं, और हमको जिसे कम दिन की वैरायटी चाहिए तो 43 नंबर आता है तो उसको लगाते हैं।
0: तो पत्ता गोभी क्या पूरे साल करते हैं क्या?
1: पत्ता गोभी लगभग 8-9 महीने हो जाता है, बरसात में थोड़ा सा उसको नहीं लगाते हैं, 2 महीना छोड़ देते हैं,
0: और पूरे साल गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी और पत्ता गोभी पैदा करते हैं।
1: जी जी, और टमाटर भी जो करते हैं तो वो भी स्टेकिंग से करते हैं, 5-6 फीट उसको तार बांस की सहायता से ऊपर करके चढ़ा के फराते हैं, तो एक पेड़ से लगभग 8 से 10 किलो तक उत्पादन भी हो जाता है।
0: तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की बात करें तो इसकी रोपाई का अंतरण क्या रखते हैं और रोपाई में कुछ खास बारीकी रखते होंगे?
1: इसमें डॉक्टर साहब क्या होता है कि इसको पहले हम बेड बनाते हैं, बेड इस तरह से बनाएंगे कि एक बेड पर 2 पौधे लग जाए दोनों किनारे पर, और नाली से हमारी जल निकास हो जाए, और ऊपर जो है ड्रिप पाइप लगा देते हैं।
0: यानी ड्रिप से सिंचाई करते हैं?
1: हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ड्रिप से इतना मतलब फायदा होता है डॉक्टर साहब कि हर पौधे को पानी मिलता है और उसी से हम उसका पोषक तत्व प्रबंधन भी कर देते हैं।
0: अच्छा, फर्टिगेशन करते हैं?
1: जी, और हमारे फालतू जो जगह बचता है बीच में उसमें खरपतवार नहीं उगता है, इसलिए किसानों को काफी लाभ होता है, काफी उनकी दवा का खर्च बच जाता है और उर्वरक भी बचता है।
0: तो गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती खास करके फूल गोभी और पत्ता गोभी में कौन कौन सी बारीकी करते हैं आप?
1: इसमें बारीकी डॉक्टर साहब ये देखना होगा तो जो नर्सरी हमारी होती है वो लगभग 22 से 26-27 दिन पर 25 दिन पर ये नर्सरी जब लग जाती है तो उस पौधे का विकास अच्छा होता है, और लगाने के बाद पोषक तत्व प्रबंधन जो है उसका थोड़ा सा बढ़िया देख रेख करते हैं, क्योंकि इस समय हाइब्रिड गोभी ही ज्यादा लगता है, तो लगाने के 60 दिन बाद निकासी हो जाती है। तो बीच में यदि हम उसका देखभाल बढ़िया से नहीं करेंगे, पौधा कमजोर रहेगा, तो उसमें फूल जल्दी आ जाता है।
0: तो फसल की भूख कैसे मिटाते हैं आप?
1: फसल की भूख मिटाने के लिए पहले तो हमारे यहाँ 112 बकरियां हैं और 8 गाय भैंस हैं, जिसका हमारे यहाँ काफी मात्रा में गोबर का खाद हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट भी हम बनाते हैं और गोबर गैस लगा उसकी सैलरी यूज करते हैं, और इसके बाद हल्का फुल्का रासायनिक खाद का सहारा लेना पड़ता है।
0: आजकल ढेर सारे स्मार्ट उर्वरक भी आ गए हैं, जल विलय उर्वरक आ गए हैं, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस आ गया है, इसका भी इस्तेमाल आपने किया?
1: ये डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी खाद है, जो दानेदार हम लोग खाद देते हैं, ये तो लगभग आधा से भी ज्यादा वेस्ट चला जाता है। लेकिन जो जल विलय का आपने नाम लिया है, जल विलय हम आकाशवाणी से सुन करके ही, इफको कंपनी का उस समय था, उसी समय से हमने जल विलय का प्रयोग शुरू कर दिया, और इतनी अच्छी वो खाद है कि बिना दानेदार का प्रयोग किए अपने जल विलय से उत्पादन ले सकते हैं।
0: तो फूल गोभी और पत्ता गोभी की बात करें तो एकड़ में आपकी लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है
1: उसमें? डॉक्टर साहब देखिए कि जो गोभी का सबसे महंगा और सबसे सस्ता महीना होता है, हम लोग मार्केट जाते जाते रोज अनुभव हो गया है, तो गोभी का सबसे सस्ता महीना फरवरी होता है और सबसे महंगा महीना जो है जुलाई होता है फूल गोभी के मामले में। तो हम लोग चाहते हैं कि जुलाई में ज्यादा निकालें और फरवरी में कम निकालें, जो कम रेट रहता है। तो जो हम लोग ये बरसात और अक्टूबर जैसे आ रहा है, तो इसमें जो हमारा गोभी निकलेगा सबसे अच्छा रेट मिलता है। तो एक एकड़ में यदि बात की जाए तो लगभग 15-16 हजार इसमें पौधे लगते हैं। और जो हमारी लागत आती है, तो लागत इसमें लगभग हम लोग अपना घर से भी कुछ काम कर लेते हैं, उर्वरक कम लेते हैं, तो 30-35 हजार इसमें लागत आ जाता है एक एकड़ में।
0: और उत्पादन?
1: उत्पादन तो हम जो पहले साल हम किए थे, जो हमें जिले में पुरस्कार मिला था, तो एक एकड़ से जो है 1.5 लाख रुपया शुद्ध लाभ हुआ था हमें।
0: अच्छा, आप फूल गोभी और 8-9 महीना पत्ता गोभी करते हैं, तो केवल गोभी वर्गीय सब्जियों से कितना कमा लेते हैं?
1: इसमें देखिए बाजार भाव, कभी फसल भी कम बेसी होता रहता है, तो इसमें वही 7-8 लाख 6 लाख मिल जाता है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है गोभी वर्गीय सब्जियों का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों से हम यही कहेंगे कि गोभी देखिए 3 महीने में पूरी तरह से खेत खाली हो जाता है। एक खेत में हम यदि चाहें तो 3 से 4 बार फसल ले लेंगे। कभी कभी हम लोग इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि गोभी हमारी जैसे 50% कट जाती है जब खेत से, तो उसी समय नया गोभी लगा देते हैं, और जैसे ही हमारी गोभी जो है थोड़ा सा सीधा होने लगती है, उसी समय काट के पूरा खेत खाली हो जाता है। तो किसान भाइयों से हम कहेंगे गोभी एक अच्छी फसल है और नकदी फसल है, और जल्दी तैयार होकर जल्दी पैसा देने लगती है, इसलिए सभी किसान भाइयों को गोभी की खेती करनी चाहिए।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी 84-230-76-225 84-230-76-225 84-230-76-225।
0: बाबूलाल मौर्य भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप पूरे साल फूल गोभी की खेती करते हैं अपने खेत पर और पत्ता गोभी की पूरे साल में 8 से 9 महीना खेती करते हैं, कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रीता बहनी और अब बारी है अपने पंचन से बातचीत करे के। रोहित कह सकते हैं उनका चिट्ठी पत्र के माध्यम से ने या फिर ईमेल के माध्यम से ने, तो चलो बताए दिन जाए पंचन के यहाँ पता।
4: भैया हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम किसान

0: वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
1: अपन जो हमारे ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com।
0: भैया अब अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक बारिश और आंधी तूफान के चलते गई 15 लोगों की जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ के जोन ए में 16,726 अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का दिया आदेश। शहर के बाकी हिस्सों के अवैध निर्माण को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती, इटावा सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गुरुवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी है। भारी बारिश के चलते लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में आज स्कूल बंद रहे। राहत आयुक्त डॉ ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जारी भारी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। राहत आयुक्त ने बताया कि पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण प्रदेश में 15 जनहानि, 4 पशुहानि तथा 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 5 व्यक्ति घायल हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राहत आयुक्त ने बताया कि पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई है। फरुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना तथा कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राहत आयुक्त ने बताया कि नेपाल में हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत सीमावर्ती जनपदों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में नदियों के जलस्तर के बढ़ने की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपील की है कि नागरिक अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क कर सूचना दें। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 सितंबर के बाद हालात में सुधार होगा।
3: कल यानी कि 27 सितंबर को दिन चढ़ने के साथ साथ प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा में प्रभावी तौर पर कमी आने, परंतु तराई इलाकों में 27 सितंबर को भी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। तदुपरांत 28 सितंबर से इसकी तीव्रता पूर्णतया समाप्त हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश में जारी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर कम जाने की संभावना है तथा बारिश जो है 28 सितंबर से प्रदेश के तराई इलाकों में छिटपुट वर्षा तक सीमित हो जाने की संभावना है।
1: लगातार बारिश के चलते अमरोहा, जौनपुर सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में गन्ना, धान और सब्जियों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: भारी वर्षा से जलभराव हुआ है और तेज हवाएं चलने से फसलें खेतों में गिर गई हैं। इससे धान, गन्ना व सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका ने सोमवार तक बरसात जारी रहने की आशंका जताते हुए खेतों में जमा पानी निकालने को कहा है। शारदा और देवहा नदियों में बैराजों से काफी अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को कहा। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को फिरोजाबाद के ओडीओपी ग्लास वर्क से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
5: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किस्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
6: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
5: जौनपुर के लाभार्थी नीरज गुप्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से मिले ऋण ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दिया और आज उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा है।
7: प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई स्वनिधि योजना है, एक छोटे मोटे रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि एक बोस्टर काम करता है और ये उनके बिजनेस को बढ़ाने काम किया है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए ऐसी योजनाओं को उन्होंने लाया जिससे गरीब लोगों का विकास हो सके।
5: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ यह कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। राहुल यादव, आकाशवाणी समाचार, जौनपुर।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन यूपीज जर्नी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर टू एआई एंड सेमीकंडक्टर पावर हाउस सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का अगला ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाना है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक बारिश और आंधी तूफान के चलते गई 15 लोगों की जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरठ के जोन ए में 16,726 अवैध निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का दिया आदेश। शहर के बाकी हिस्सों के अवैध निर्माण को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
8: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से

0: आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म रंगून का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत रूप कुमार राठौड़ और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपने सुना पंकज उदास की आवाज में गाया ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त हुआ।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपने सुना शंकर महादेवन और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म घातक का ये गीत। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद

0: इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
0: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
4: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
2: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
7: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
8: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
10: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
9: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECINET platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by electoral registration officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said if a hearing is required, the elector may authorise any adult member of their family to appear on their behalf. The district election officers will also create adequate number of help desks and hold special camps for the people living in night shelters, labour, poor people and the homeless. A committee headed by the senior deputy election commissioner and comprising an independent expert from IIT and IIIT will review ECINET to double check that it complies with the provisions of the acts and rules. More from our correspondent.
11: The SIR has been completed in 20 states and union territories, including Bihar and West Bengal. The Election Commission said that any person whose name has been left out during SIR and wants to include their name can apply to the concerned electoral registration officer. The chief electoral officer, district election officer, and electoral registration officer will launch a special drive for enrollment of these electors. Meanwhile, in the national capital, following chief electoral officer of Delhi's request, the deadline for filing claims and objections has been extended until 30th October. The

0: इतनी रात में SMS? KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आइए, अब सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कुमार की आवाज में फिल्म गीत का ये गीत।

श्रोताओं, मुकेश के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी, पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गंगाए डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना, ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से

0: अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, तो इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वॉज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड नाउ बाय इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो गवर्नमेंट फंडिंग फॉर नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स एक नया इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% हाँ, ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
2: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
3: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो, मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, so it's also called as carbon recycling, you use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इफ यू लुक एट इट, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स

0: सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है, फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है। बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। दूसरी चीज है कि हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्ड वर्क करना चाहिए।
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र हैं, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम हैं, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस सेंट्रल, एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा, उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को। आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
2: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
5: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक

0: का विज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
2: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल साहनी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पॉलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताता। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
2: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडायवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
3: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
0: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय विज्ञानियों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार-बार दिखा

0: दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
0: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियों की हो तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सू की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगे और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी

0: देखी हैं, डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2,220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,300 के आसपास डॉल्फिन हैं। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
1: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
2: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
1: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
2: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन। उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुचि श्रीयार तायमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोरसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नादद्वीप रत्नाकर, लय तिलकम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंधनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं तिरुचि डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। लीजिए सुनिए मिश्र जाति त्रिपुट तालम।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विच फीचर्स लय विन्यासम। फर्स्ट अ मृदंगम रिसाइटल बाय विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन, फॉलोड बाय अ डोलू रिसाइटल बाय विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया। To begin with, listen to Mridangam rendition of Vidwan Selam Shri K. Srinivasan. Selam K. Srinivasan hails from a traditional family of musicians. His father, Shri Jata Krishnaya Bhagavatar, was a vocalist of the traditional Bhajan Sampradaya. He received initial training in music from his grandfather, Shri G. K. Ramaswamy Bhagavatar, and later from Mridangam Vidwan Selam Shri V. Krishnamachari. Further and advanced training was from Kalaimamani Tiruchi Shri R. Tayumanavan. A staff artist of Akashwani since the year 1990, Selam Shri K. Srinivasan is now a top grade artist of Akashwani Tiruchirappalli. Acclaimed for his unique Pudukkote style of rendition, Shri K. Srinivasan has accompanied stalwarts of music in concerts and has imbibed and adopted various styles in his rendition. A distinctive left-handed mridangam artist, he has travelled extensively for his performances, especially for Akashwani Sangeet Sammelan, South Zone Hookups and national programs of music. He is the recipient of several awards and titles. Selam Shri K. Srinivasan also trains young artists in lya intricacies in mridangam, ghatam, Kanjira and Morsing. In tonight's program, he is accompanied by Tenkasi Shri H. Paramasivam on the Kanjira, Andanallur Shri R. Ranganathan on the Ghatam. Violin refrain is by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. Selam Shri K. Srinivasan will now play Mishra Jati Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर धुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया।
1: In the National Program of Music featuring Laya Vinyasam, you just heard Mrudangam recital by Selam Shri K. Srinivasan. He was accompanied by Tenkasi Shri H. Paramasivam on the Kanjira, Andanallur Shri R. Ranganathan on the Ghatam. Violin refrain was by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया।
2: श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया आकाशवाणी हैदराबाद के ए ग्रेड तविल कलाकार हैं। उनकी संगीत यात्रा का प्रारंभ वर्ष 1990 में उनके प्रथम गुरु श्री वीएन लक्ष्मी नारायण के मार्गदर्शन में हुआ। बाद में उन्होंने श्री यल्लूरु श्री निवासलु तथा श्री तिरुकडेयूर टीजी बाबू से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया। वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019

0: 1935 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
1: श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। His musical journey began in the year 1990 under the guidance of his first guru, Sri V.N. Lakshmi Narayanan. Later, he received training and guidance from Sri Yellur Srinivasulu and Sri Tirukkadayur T.G. Babu. In the year 2018, he was honored with the Eminent Citizen Award of Telangana State. And in 2019, he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently, he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami Temple in Yadadri. He has had the privilege of providing tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication and profound experience, Sri V. Chinna Venkata Subbaiya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying on Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
0: Aaiye ab sunte hain Sri V. Chinna Venkata Subbaiya dwara Tavil Lay Vinyasam, jo Chaturashtra Jati Triput Taal mein nibadh hai.
1: Let us now listen to the Tavil Lay Vinyasam by Sri V. Chinna Venkata Subbaiya, set to Chaturashtra Jati Triputa Talam.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चेन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the Tavil Live Vinyasam by Sri V. Chinnavenkata Subbaya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashvani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन

0: व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।